भरत को अयोध्या के राजपद के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु

भरत स्वप्न में भी श्रीराम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटुवचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

0: रामचरितमानस से अयोध्याकांड का भाग 18 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। अशीतितम स्वतंत्रता पर्वणः पूर्व संध्यायाम् अमृतेन संभाषणेन राष्ट्रमभि संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्राह यत् जागतिक अशान्तेः युद्ध विभीषिकायाश्च तमसि अपि भारतीया अर्थव्यवस्था उज्ज्वल नक्षत्रवत् तीव्रतमगत्या समेधते। राष्ट्रपतिना प्रोदीरितं यत् भारतस्य आर्थिक संवृद्धिः वैश्विक संवृद्धिमतिक्रम्य द्वि

0: Harap anda telah menikmati lagu-lagu patriotik tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, acara radio report, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की। आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में

10 साल में 70% ये होता है काम, और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है, और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में इतने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल, और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है, और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई, और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग, हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने

अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए

हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो

0: प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथ ही साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तो हमारी सातवीं धारा है, दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो,
1: डिजिटल

कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां देश सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सबने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर। देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है। स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया। नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है। खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख

करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो हजार नौ दस का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब, मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। ऑप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में
इन विधाओं में आज भारत खेल

करता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, तीन चौथाई हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। इन नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस निशान रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत

आधार पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। एम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आगे करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 35% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले,

भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाला। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। इस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा,

समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे, और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए, सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है, और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर, और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में, और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें, और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें, तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा

0: योगी प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो सात बच्चे वहां निकट हैं उनके उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं
1: जी। और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह अपना आशीष देना चाहते हो और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
0: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है और हर व्यक्ति आज हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं उनकी योजनाएं रही हैं उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी है उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है, अपने

0: देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए। और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जन धन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं, और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण

0: लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
2: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गतिशक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
2: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
2: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने

0: का निर्णय कर लिया था,
1: ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता।
0: हमने उस 99% को
1: जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ लिया है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया।

प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 की

0: ये परवाद है ये फताई नीर दर गुरु है ये कारे पायदारी ये बुलंद मुद्दत ओ आगाही अज वजियत फजाई ये मोरी दे बहस गर आर्मी गिरन ओ हम जेने इतलादात के साहिरे पलेत फार्मा ये बेलो मिलली अज जुमले गिरो कारी ये जवाले है ये फजाई ये आई ए ए व गुरु कारी ये जवाले है ये आई एस ओ वी रा हाई रा बराये हम आहंगी बेने विदारत फेदा व साहदमान है ये बेलो मिलली दर जमीन ये निजारत ओ काही शेद वाले हाई ये फजाई फराहम में कुना डॉक्टर जितेंद्र सिंह दर मोरीदे दफे माहवारे हाई दर पायाने उमर शान गुफ्त के सियासत फजाई ये हिन ईजाद दस्तूरुल अमल हाई ये शनाख्ते शुदे ये बेनुमिलली दर मोरीदे काही चे वाले हाई ये फजाई अर जुमले इकदामात मरबूत बे दफे वाले हाई ये फजाई दर पायाने उमर शान रा दर बरनामा फजाई ये हिन इल्जामी में कुना कार मामूरियत फजाई ये आरी अर जवाले के तवस्त इसरो रहवरी मिशवाद गाही पीशगीराने दर जहते इजराये दस्तूरुल अमल हाये दफे महवारे हा दर पायाने उमर शान हस वजीर हमजीनी निजारदाज के होंजार हा दस्तूरुल अमल हा वो रवैये हाये मुंतशिर शुदे तवस्तुते आई एन स्पेस दर साले 2024 हमें बादीगराने फजाये हिंद्रा तश्वीक में कुनता इकदाम दफ पास मामूरियत काफी रा ईजाद कुनन या इत्मीनान हासिल कुनन के दाराई हाई ये फजाई ये आना अस्तरी ये पोसीदगी ये तभी ये उमर मदारी ये बिसियार महदूदी दारन डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगाही अज मौकियत फजाई एस एस एरा बेउनवान यकी अज मुहिम तरीन अवामी ले तवान मनसाजी ये पायदारी ये फजाई बुलंद मुद्दत मार्रफी कर वे गो साहिर इल्जाम मुहिम शामिल बर आवुर्दे करदन इल्जाम फनी तवस्त अपरातुरहाई मानंद काबिलियत मानूर वो रदियाबी अंजाम ताहुदाते असासी मानंदे सब व बे इश्तरा गुजारी ये नुगादे तमास व तजमीन यक चारचू बे निजारती ये कवीस दुक्तु जितेंद्र सिंह बाताकीद बराहमियत हमकारी बैनुमिलली यो काबिलियत है ये बोमी गुफ्त के हमकारी बैनुमिलली व इश्तरा गुजारी ये दादेहा बराई ये आगाही ये जामे अज वजियत फजा वो पायदारी ये बुलंद मुद्दत जरूरी ऊ हम चिनिन बराहमियत अफजाइश आगाही दरमियान बाजीगराने फजाई दर मोरी दे शिकनंदई ये मनाती गे काबिल इस्तिफादे दर मुहिते फजा बराये तजमीन पायदारी ये बुलंद मुद्दत ताकीद कर तफसीर रूज राशनी दी व इनस गुफ्तार इमरूज
1: इनक तवज्जो फरमाइद बे गुफ्तार तहत उन्होंने मबारजे आजादी हिंद यक सफर बे हसूल इस्तकलाल नविसंदे व गुइंदे नईमुद्दीन कुरैशी हिंद यकी आज कोहने तरीन तमदन है जहानीस के दारा ये तारीख फरहंग व तमदनी ये बिस्यार गनी मी बोशाल बावजूद इनक तवज्जो फरमाइद बे गुफ्तार तहत उन्होंने मबारजे आजादी हिंद यक सफर बे हसूल इस्तकलाल नविसंदे व गुइंदे नईमुद्दीन कुरैशी हिंद यकी आज कोहने तरीन तमदन है जहानीस के दारा ये तारीख फरहंग व तमदनी ये बिस्यार गनी मी बोशाल बावजूद इन पेशीने ये दरख्शान इन सरजमीन बराये तकरीबन 200 साल तहत सुल्तय इस्तेमार ब्रिटानिया करार गिरा इस्तेमार ग्रान न तनहा मनावे तबीयी व सरवत हो यहीं रा बे सूद खुद बेकार गिरफ्तार बल्कि आजादी सियासी इक्तसादी व इज्तिमाई मर्दुम रा नीज महदूद साख्तान दर नतीजे रूये आजादी ख्वाही व इस्तकलाल तलबी दरमियान मर्दुम हिंद बे तदरीज तकवियत याफ्त व मबारजे तोलानी व पुर इफ्तिखार बराये रहाई अज इस्तेमार आगाज कर दी इन मबारजे के सरशार फदाकारी ईसार व हमबस्तगी मिली बोध सरअंजाम बे इस्तकलाल हिंद दर साल 1947 मिलादी अंजामीद हजूर इंग्लिसिया दर हिंद इब्तदा अज तरीक शिरकत ईस्ट इंडिया यानी शिरकत हिंद शर्की आगाज शोद इन शिरकत बे बहाने ये तिजारत वारिद हिंद का दीद अम्मा बे तदरीज नफूज सियासी व निजामी खुदरा गुशरिश दाद व बख्श बुजुर्गी میدهد. شبه قاره را تحت سلطه خود در آورد. حکومت استعماری با وضع مالیات های سنگین، بهره برداری از منابع طبیعی و تضعیف صنایع بومی، اقتصاد هند را با مشکلات فراوان روبرو ساخت. بسیاری از کشاورزان و صنعتگران زندگی خود را از دست

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्ज्वल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल

0: तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक एक विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
2: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework, or Saptadhara, aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class family for various public examinations.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
2: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
1: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. Reports of Independence Day celebrations are pouring in from states and union territories. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi today outlined an ambitious roadmap for a developed Odisha with emphasis on security, education, investment, infrastructure and employment as the state celebrated the 80th Independence Day. Addressing the state-level function in Bhubaneswar after unfurling the tricolour, Mr. Majhi said, coordinated efforts of the centre and the state have brought left-wing extremism to an end in Odisha, creating new opportunities for development in the affected areas. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervour and enthusiasm. The main function was held at the iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. In Punjab, the state-level ceremony was held at the border district of Firozpur, where Chief Minister Bhagwant Singh Mann unfurled the national flag. The national song, Vande Mataram, was played before the national anthem. President Draupadi Murmu today paid homage to the bravehearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The President laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs.

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम के आज खासम खास शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
2: और मैं हूँ आपके साथ दीपा।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार
1: और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
2: और श्रोताओं, मेरी ओर से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
2: दोस्तों, सबसे बड़ी आज़ादी वो नहीं जो हमें मिली है, बल्कि वो है जिसे हम हर दिन सही सोच, सही कर्म और सही निर्णयों के जीवित रखते हैं। आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा, बल्कि हर उस दिल में भी लहरा रहा है जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं।
1: और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल आपके लिए कि स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत मतलब क्या है? अपनी पसंद से जीना, अपने फैसले खुद लेना या फिर कुछ और? जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिख भेजिए, अपने विचार हमें भेजिए इस मेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। तो आइए देशभक्ति, उमंग, दिल को छू लेने वाले गीत और मुस्कान से भरे इस स्वतंत्रता दिवस के विशेष सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: अभी आपने गीत सुना दुल्हन चली, फिल्म थी पूरब और पश्चिम, गायक थे महेंद्र कपूर।
1: और आज भारत अपनी आजादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे कर

0: करके 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है दीपा जी, और हर तरफ उत्सव का माहौल है, हर चेहरे पर मुस्कान है, हर दिल में गर्व है और हर सांस में देशभक्ति की महक है। गलियों से लेकर शहरों तक तिरंगे की शान लहरा रही है, देशभक्ति के गीत हवा में गूंज रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की प्रस्तुतियां हो रही हैं, घरों में मिठाइयां बांटी जा रही है और हर ओर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जय हिंद।
1: बिल्कुल मंजुला, लेकिन मैं तो कहूंगी अपने श्रोताओं से कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों के बलिदान को नमन करने का दिन है जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेने, अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आजादी दी।
0: और शायद दीपा जी, आजादी का सबसे खूबसूरत जश्न सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं बल्कि उस भारत को आगे बढ़ते हुए देखने में है जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी बेटियां बड़े सपने देख रही हैं, युवा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, नए विचार और नई तकनीक देश की तस्वीर बदल रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लोग अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना रहे हैं और अपने देश की मिट्टी, हुनर और उत्पादों के प्रति सम्मान भी बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा मंजुला, तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न नहीं उस भारत का भी जश्न मनाएं जो हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। आज जब हम अपने देश को बदलते हुए देखते हैं तो सचमुच बहुत खुशी होती है। भारत बदल रहा है और ये बदलाव केवल बड़े शहरों या बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच में दिखाई दे रहा है। आज के भारत में महत्वाकांक्षा भी है, अपनी जड़ों से जुड़ाव भी है और देश के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा भी।
0: क्या बात है दीपा जी, तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न मनाए उस भारत का भी जश्न मनाए जो हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश को बेहतर बनाने का सपना किसी एक पीढ़ी का नहीं है, हम सबका है। तो ना मिट्टी से रिश्ता टूटे, ना सपनों की उड़ान रुके, भारत की नई सुबह में हर आंख का अरमान खिले, जो मिला है पूर्वजों से उसे और संवारना है, ये देश हमारा है इसे थोड़ा और निखारना है।
1: वाह,

0: देश है वीर जवानों का। ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी नया दौर और गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और बलवीर।
1: और अब बात कुछ जिम्मेदारी की। हम अपने देश को सिर्फ बेहतर देखना चाहते हैं या उसे बेहतर बनाने में अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं, क्योंकि नागरिक होना सिर्फ अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं है, अपने आसपास की दुनिया के प्रति जवाबदेह होना भी है।
0: बिल्कुल सही बात है मंजुला, और हम संकल्प लें कि जहाँ संभव हो एक पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को सिर्फ सलाह नहीं अवसर देने की कोशिश करेंगे, किसी लड़की की शिक्षा, किसी महिला की आर्थिक स्वतंत्रता या किसी युवा के हुनर को बढ़ावा देने में अपना छोटा सा योगदान देंगे।
1: बहुत सही कहा। और देश घूमने निकले तो सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं आएंगे, जिस जगह जाएंगे उसे साफ रखेंगे, स्थानीय संस्कृति और लोगों का सम्मान करेंगे, स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और कारोबार को बढ़ावा देंगे, अपने देश के अनदेखे खूबसूरत हिस्सों को दूसरे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना भी देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार में योगदान देना है।
0: आज हमारी एक और बड़ी जिम्मेदारी डिजिटल दुनिया में है। सोशल मीडिया हमारी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, तो इसका इस्तेमाल ज्ञान बांटने, अच्छे कामों को सामने लाने, भारतीय कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्यों ना करें। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को भी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सीखने, काम आसान करने और नए अवसर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ, जिंदगी को सिर्फ स्क्रीन पर मत जिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और हम भारत को सिर्फ ऑनलाइन सराहेंगे नहीं, उसे जमीन पर भी बेहतर बनाने में योगदान देंगे, और अपनी आजादी का इस्तेमाल सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए भी करेंगे, क्योंकि देश हमसे कोई असाधारण काम नहीं मांगता, बस जहां है वहां थोड़ा बेहतर नागरिक बनने की अपेक्षा करता है। मेरी आजादी, मेरी जिम्मेदारी।

0: डाल डाल पे सोने की चिड़िया, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी सिकंदर आजम और गायक थे मोहम्मद रफी।
1: और मेल्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। हमारा आज का सवाल है, सबसे पहले मैं वो बता दूं कि स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है आपके लिए, वो आपको बताना है। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो सबसे पहला मेल मैं पढ़ रही हूँ, ऐना लिख रही हैं कि अपनी ज़िंदगी के फैसले, खुद लेने की आज़ादी और अपने सपनों को बिना डर के जीने का हौसला। मेरे लिए आज़ादी सिर्फ बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी पहचान, अपनी ज़िंदगी के अपने तरीके से को चुनने का हक है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा संदेश था मंजुला। और हमारे साथ आदित्य शर्मा जुड़ चुके हैं, उनके हिसाब से मेरे लिए वो लिखते हैं कि स्वतंत्रता का सबसे ब्यूटीफुल मतलब जो अर्थ है, उन्होंने लिखा है कि अपने निर्णय खुद लेना और अपनी पहचान बनाना।
1: बिल्कुल। तो अनन्या श्रेष्ठा लिखती हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत अर्थ है अपनी पसंद से जीने का अधिकार, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता और सम्मान का भी ख्याल रखना। असली आज़ादी वही है जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। बहुत ही अच्छा लिखा है। और अगला कौन सा?
0: हाँ, आदित्य
1: अगला है। हाँ, एक अनिल मेहता जी भी लिख रहे हैं कि बिना किसी डर के सोचना, सच बोलना और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सम्मान से जीने का अवसर देना। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने भी। और आगे साधना गोयल जी लिखती हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता का सबसे सुंदर अर्थ है गुलामी से मुक्त होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी से जीना ही स्वतंत्रता है।
0: और मेरे पास रमीशा जैन जी कहती हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर अपने मन के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं बिना भय, अपराध बोध अथवा किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए अपने निर्णय स्वयं ले सकूं और सपने अपने जो सत्य को कहने, अपनी सीमाएं निर्धारित करने और जहां सम्मान ना मिले वहां बिना संकोच पीछे हट जाने का साहस है। क्या बात है,
1: बहुत ही अच्छे मेल्स सारे जो आंसर्स हैं वो आए, उसको पढ़कर यही लगा कि हमारा देश सही में बदल रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, इसका सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है।

0: अभी हम सुन रहे थे सोनू निगम रूप कुमार राठौर को फिल्म बॉर्डर से।
1: और मंजुला, जो सावन आता है ना, तो सावन आते ही जैसे पूरा वातावरण ही बदल जाता है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम फुहारें, पेड़ों पर झूले, और मन अपने आप उमंग से भर जाता है। क्या कहना है तुम्हारा?
0: बिल्कुल सही। और आज एक खास दिन है, हरियाली तीज, जब सावन सिर्फ मौसम नहीं एक एहसास बन जाता है। हरियाली तीज नाम में ही जैसे पूरी ऋतु का रंग समाया हुआ है। यह पर्व केवल श्रृंगार का नहीं, प्रकृति के साथ हमारे उस पुराने रिश्ते का उत्सव भी है, जिसमें बारिश का स्वागत है, हरियाली के लिए आभार है और जीवन में सुख समृद्धि की कामना है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, हरियाली तीज और मधुश्रवा तृतीया एक ही पर्व के दो नाम हैं। मधु का अर्थ है मधुरता या आनंद, और श्रवा का आशय है प्रवाह, यानी श्रावण मास की वो तृतीया जब प्रकृति अपनी पूरी हरियाली, ताजगी और मधुरता के साथ जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है।
0: बिल्कुल सही। और परंपरा में हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन के सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।
1: बिल्कुल मंजुला। और हरियाली तीज की सबसे सुंदर बात यह है कि गांव हो या शहर, हर जगह उत्सव का माहौल बन जाता है। पेड़ों पर झूले सजते हैं, महिलाएं सावन के लोकगीत गाती हैं, हरे रंग के वस्त्र चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी रचाती हैं। ऐसे में सावन और हरियाली

0: हरियाली तीज की पूरी तस्वीर ही जैसे इन पंक्तियों में उतर आती है। हरियाली तीज का त्योहार है, गुजियों की बहार है, पेड़ों
1: क्या
0: पर पड़े
1: बात
0: हैं
1: है, क्या
0: झूले,
1: बात
0: दिलों में
1: है।
0: सबके प्यार है।
1: और तीज की एक और सुंदर तस्वीर है, सखियों का साथ, एक साथ सजना, झूला झूलना, गीत गाना, हंसी मजाक करना, पुराने किस्से सुनना। तीज हमें याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ पूजा पाठ की तारीखें नहीं होते, वे रिश्तों को फिर से जीने के बहाने भी होते हैं।
0: और इस अवसर पर दोस्तों घेवर, मालपुआ, खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए
1: ओहो
0: जाते हैं और परिवार तथा सहेलियों के साथ मिल बांट कर उसका आनंद लिया जाता
1: तो
0: है।
1: इस हरियाली तीज पर हरे रंग को सिर्फ अपने कपड़ों में नहीं, अपनी सोच में भी उतारिए। एक पौधा लगाइए, प्रकृति के लिए कुछ कीजिए और अपने रिश्तों में हो वो हरियाली बनाए रखिए, जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो, सम्मान हो और साथ हो। क्योंकि आखिर तीज का असली उत्सव क्या है? प्रकृति हरी हो, रिश्ते हरे भरे हो, मन में उम्मीदें हरी रहे और जीवन में खुशियों के पींगे कभी ना रुके। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

0: प्यारा गीत था हरे कांच की चूड़िया, और फिल्म भी थी हरे कांच की चूड़िया, गाया था आशा भोसले जी ने।
1: और आज का दिन 15 अगस्त की सुबह हवा में लहराता तिरंगा, और जैसे ही राष्ट्रगान का धुन बजता है, कुछ पल के लिए हम सब

0: पहचान एक हो जाती है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी आजादी की कहानी है, हमारे वीर जवानों का साहस है, करोड़ों भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है।
1: आजादी का अर्थ है अपने विचार खुलकर रखने का अधिकार, अपने सपनों को जीने का साहस और अपनी विविधताओं के साथ एक होकर आगे बढ़ने की शक्ति। और शायद इसीलिए तिरंगे का सम्मान करना सिर्फ एक नियम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।
0: इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान हम सबको ये संदेश देता है कि तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर ही नहीं, बल्कि हर घर, हर दिल और हर भारतीय की चेतना में पूरे सम्मान के साथ लहराना चाहिए। जब हर घर तिरंगे के रंगों से सजता है, तब पूरा देश एक परिवार की तरह एक सूत्र में बन जाता है।
1: और दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों को देखिए। केसरिया साहस, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। सफेद शांति, सत्य और ईमानदारी का संदेश देता है। हरा रंग समृद्धि, प्रकृति और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। और बीच में बना अशोक चक्र हमें सिखाता है कि राष्ट्र की प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना ही जीवन है।
0: तो इस 15 अगस्त एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनें और उत्सव समाप्त होने पर भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। और अंत में एक विशेष बात और, इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रीय आयोजन मनाया जा रहा है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में कम्प्लीट हुआ और पूरे एक साल तक इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा, साहस और एकता का स्वर बनी। आज भी वंदे मातरम सुनते ही मन में वही गर्व, वही श्रद्धा और वही राष्ट्र प्रेम जाग उठता है।

0: वंदे मातरम ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी आनंद मठ और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दोस्तों, आज तिरंगे को सिर्फ देखिए मत, भारत को महसूस कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ऐसा भारत जहां सुबह आसाम की चाय की खुशबू

0: से ही शुरू हो सकती है और शाम कर्नाटक की कॉफी की महक में घुल सकती है। कहीं पहाड़ों पर बारिश बादलों को छूती है, कहीं रेगिस्तान में हवाएं रेत पर कहानियां लिखती हैं, कहीं समुद्र की लहरें हैं, कहीं बर्फ से ढके पहाड़, और इन सब के बीच एक देश हमारा भारत। कश्मीर की कश्मीरी भाषा सुनिए, पंजाब की बोली में अपनापन महसूस कीजिए, बंगाल की मिठास सुनिए, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, आसाम की असमिया। भाषाएं बदलती है लेकिन भाव वही रहता है, अपनापन।
1: और भारत की संस्कृति तो जैसे एक चलता फिरता उत्सव है, कहीं गरबा की थाप है, कहीं बिहू का उल्लास, कहीं भांगड़ा की ऊर्जा, कहीं कथक की नजाकत, कहीं भरतनाट्यम की गंभीरता, कहीं छऊ के मुखौटे, तो कहीं राजस्थान की कठपुतलियां।
0: बिल्कुल दीपा जी, एक तरफ कच्छ की कढ़ाई, दूसरी तरफ कश्मीर के पश्मीना, कहीं मधुबनी की चित्रकारी, कहीं वारली की कला, कहीं पट्ट चित्र, कहीं गोंद कला। सोचिए इतनी अलग अलग कलाएं, इतने अलग अलग रंग, फिर भी सब मिलकर भारत की एक ही तस्वीर बनाते हैं। अब जरा भारत की थाली में आइए दीपा जी, आप बताइए।
1: बिल्कुल बताती हूँ। कहीं सरसों के तेल की खुशबू, कहीं नारियल और करी पत्ते की महक, कहीं बाजरे की रोटी, कहीं अप्पम, कहीं ढोकला, कहीं लिट्टी चोखा। भारत में भोजन सिर्फ स्वाद नहीं है, ये हमारी संस्कृति की स्मृति है। किसी घर में त्योहार पर गुजिया बनती हैं, कहीं पोंगल, कहीं ओणम की दावत, कहीं बिहू के पकवान, कहीं ईद की सेवैयां। त्योहार अलग हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने की हमारी आदत बहुत पुरानी है।
0: और ये विविधता हमें बांटती नहीं, हमें एक दूसरे को जानने का मौका देती है। इस 15 अगस्त पर आइए अपनी इस विविधता को सिर्फ स्वीकार नहीं, उसका उत्सव मनाएं। हम अलग अलग नदियां हैं लेकिन बहते सब एक ही देश में हैं। हम अलग अलग रंग हैं लेकिन जब साथ आते हैं तभी तिरंगा पूरा होता है।

0: अभी हम सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर को फिल्म थी फना, और लग रहा है
1: और
0: मेला
1: मेल आई हुई है आज, जिसको लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं। और ये लिखते हैं कि हमारी ओर से आपको और घर आंगन परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अपने भारतवर्ष के प्रति सच्चा प्रेम रखना स्वतंत्रता का खूबसूरत अर्थ है इनके हिसाब
0: बिल्कुल,
1: से।
0: बहुत ही अच्छी बात। और दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि देश का विकास केवल सरकारों या बड़े उद्योगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि विकसित भारत की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे रोजमर्रा की छोटी छोटी पसंद से होती है। जब हम किसी भारतीय बुनकर की बुनी हुई साड़ी या खादी का कुर्ता पहनते हैं, तो केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी का सम्मान करते हैं।
1: और जब हमारी रसोई में हल्दी, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और देशी मसालों की खुशबू महकती है, तब हम केवल स्वाद नहीं बल्कि भारत के लाखों किसानों के परिश्रम को अपनाते हैं। जब हम मिट्टी के बर्तन, बांस की कलाकृतियां, पीतल के दीपक, लकड़ी के खिलौने या हाथ से बने हस्तशिल्प चुनते हैं, तब हम किसी कलाकार के हुनर और सपनों को नया जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हम हर बार, आप जब भी किसी भारतीय उत्पाद को चुनते हैं, तो आप केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि रोजगार, उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें कि जहां भी संभव हो, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे और अपने भारतीय उत्पादों को इतना बेहतर और लोकप्रिय बनाएंगे कि वे देश के हर घर से लेकर दुनिया के बाजार तक अपनी पहचान बनाए। आइए मिलकर कहें, स्वदेशी अपनाएं, समृद्धि बढ़ाएं।

0: अभी हम सुन रहे हैं महेंद्र कपूर को फिल्म उपकार में।
1: और इसी के साथ आज के विशेष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर नागरिक जिम्मेदार हो, हर सपना सम्मान पाए और हर दिल में तिरंगे के लिए गर्व हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मंजुला और
0: दीपा भूषण को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 आप लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में

इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, 15 अगस्त का दिन है और आसमान में तिरंगा है, दिलों में गर्व है और आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। वो फिल्म जिसने हमें सरहद का मतलब समझाया, जिसने सिखाया कि वर्दी के नीचे भी एक दिल धड़कता है, जिसके हर डायलॉग में देशभक्ति और हर फ्रेम में बलिदान है। फिल्म का नाम है बॉर्डर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि और अगले कुछ मिनटों तक हम लोंगेवाला की उस रात में जाएंगे जहां 120 जवानों ने 2000 के हमले को रोक दिया था, जहां संदेश आते हैं सिर्फ एक गाना नहीं, एक एहसास बन गया था। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए और आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस मिट्टी को, उस वर्दी को और उस जज्बे को।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है बॉर्डर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि। बात है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई पर आधारित यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भूमिका निभाई है, जिन्होंने महज 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के 2000 से अधिक सैनिकों और टैंकों का रात भर डटकर मुकाबला किया था। फिल्म की मुख्य कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि दिसंबर 1971 में राजस्थान के लोंगेवाला रेगिस्तान में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की एक छोटी टुकड़ी तैनात होती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी मेजर कुलदीप को सूचना मिलती है कि भारी टैंकों और हथियारों के साथ पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हमला होने वाला है। बेस छोड़कर पीछे हटने के बजाय मेजर कुलदीप सिंह वहीं रहकर दुश्मन का सामना करने का कड़ा फैसला लेते हैं और अपने साथियों के साथ उनमें जोश भरते हैं। अंधेरी रात में दुश्मन के टैंक भारतीय चौकियों पर हमला करते हैं। हमारे जवान अदम्य साहस दिखाते हुए खंदकों से लड़ते हैं और टैंक रोधी हथियारों से दुश्मन को रोकते हैं। वायुसेना की मदद सुबह होने पर भारतीय वायुसेना के हंटर्स विमान आ जाते हैं और बचे

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉर्डर की, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान लोंगेवाला युद्ध पर आधारित है। फिल्म में सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन, उनके परिवारों के प्रेम और देश के प्रति उनके कर्तव्यों को बहुत ही भावुकता से दिखाया गया।

इस फिल्म में ये बताया गया है कि सीमित साधनों के बावजूद भारतीय सेना की यह टुकड़ी दुश्मन के दांत खट्टे कर देती है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रेशर कुकर हो या

लीजिए श्रोता, बॉर्डर की इस मिट्टी की खुशबू के साथ आज का ये खास 15 अगस्त का सफर अब यहीं खत्म होता है। ये वतन हमारा है, हम इसके रखवाले। बॉर्डर ने याद दिलाया कि आज़ादी आसान नहीं थी और इसे संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो चलते चलते बस इतना, सरहद पर जो जवान खड़े हैं उनके नाम एक सलाम, और हम वादा करें कि इस तिरंगे की शान कभी कम नहीं होने देंगे। तो मैं रेडियो सखी निधि वर्मा आपसे लेती हूँ इजाजत। आप सभी को 15 अगस्त की दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप पंजाबी में समाचार सुनेंगे।
1: Okay.

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। देश अज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहासिक लाल किले की फसील तो राष्ट्रीय झंडा फहराया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के टीचे हासिल करने लई सानू अपने कार्य सभ्याचार सोच ते गति नू बदलना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय जंग यादगार से बहादुर सैनिकों नू श्रद्धांजलि भेंट की है। इंडोनेशिया में अज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूचाल में घट्टो घट 20 लोगों की मौत हो गई है। ते क्रिकेट में भारत और श्रीलंका विचकार दो मैचों की टेस्ट लड़ी का पहला मैच अज गोल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खेडिया जा रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। देश अज अपना 80वां आजादी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली च इतिहासिक लाल किले की फसील तो राष्ट्रीय झंडा फहराया। देशवासियों को आजादी दिवस की शुभकामनावां दिंदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि अज हर दिल विच वंदे मातरम गूंज रहा है। तिरंगा हर घर की शान वधा रहा है अते देश नवे संकल्पां नूं अपनाउंदे हुए उत्साह ते जोश नाल अगे वध रहा है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन्होंने महान सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी कुर्बानी ते त्याग नाल देश नूं आजाद कराया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश के करोड़ों नागरिकों ने दृढ़ता ते समर्पण नाल देश नूं नवीं ऊंचाइयों ते ले जाण लई यतन कीते ने। इसलिए देश के 25 करोड़ नागरिक गरीबी की दलदल विचों बाहर आए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश ने नवी रफ्तार फड़ी है और एक नवी गति नाल अगे वध रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने हर खेत्र में तेजी नाल तरक्की की है। इलैक्ट्रॉनिक्स तो लैके मोबाइल निर्माण तक हर खेत्र में उत्पादन कई गुणा वध्या है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: श्री मोदी ने कहा कि तरक्की लिए आत्म विश्वास, आत्म सम्मान ते आत्म निर्भरता जरूरी ने। भारत हुण दूजे देशां ते निर्भर नहीं रह सकता। श्री मोदी ने कहा कि आजादी तो बाद देश विच सैमी कंडक्टर लई कोई वड्डी योजना नहीं सी। उन्हां कहा कि अज दे डिजिटल संसार विच असीं चिप्स की महत्ता नूं समझदे हां, इसलिए भारत ने 3 सैमी कंडक्टर प्लांट शुरू कीते ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करने लई सानू अपने कार्य सभ्याचार सोच ते गति नूं बदलना होगा। उन्होंने इस टीचे नूं हासिल करने लई नौजवानां, मावां भैणां, किसानां ते मजदूरां विच अपना पूरा विश्वास प्रगट कीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार एक्सप्रैस ते चल रहा है अते अगले पद्धर दे सुधारां ते भी अगे वधांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोल शक्ति ते संभावना है अते इसलिए सानू विश्व लीडरशिप हासिल करने लई यतनशील होना चाहिदा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्य वर्ग दे परिवारां लई मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का प्रबंध कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले दे मंत्र तहत भारत खेडां दी दुनिया विच अपनी विशेष पछाण बना रहा है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नशा मुक्त भारत लई 100 हफ्तों की मुहिम में शामिल होने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दहाकों तो भारत को जकड़िया होया सी। नक्सलवाद का मुकाबला करने लई 3,500 तो वध सैनिकों को अपनी जानां कुर्बान करनियां पईयां। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद तो मुक्त कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सली चले गए ने पर दिमागी नक्सली अजे भी अपनी चाल चल रहे ने।
1: दिमागी नक्सल

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीब रहमान। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी जोशोखरोश के साथ मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की यौम आजादी तकरीबात की क्यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वजीर आजम ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मादनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत की। वहां पहुंचने पर पहली बार कौमी तराना वंदे मातरम बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियां बरसाईं। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया जो 2047 में विकसित भारत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क नए जोशो खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम ने मोदी की आमद के बाद फौज की तीनों शाखों और दिल्ली पुलिस के मुश्तरक गार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। कौमी परचम फहराने के बाद भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर ने कौमी परचम जबकि दूसरे ने वंदे मातरम की अक्कासी करने वाला परचम उठा रखा था। वजीर आजम की तकरीर के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फदाइया के कुल 2500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों ने यौम आज़ादी की तकरीबात का मुशाहदा किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुंबों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि यह काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मियारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा है कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुंबों का करोड़ों रुपया बचेगा।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: वजीर आजम ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले एक साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह ये नौजवान AI के आलमी शोबे में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मदनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने

0: के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दिफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गांव की सनअतों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डिब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ।
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में कोविड-19 की वबा, यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजे का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि इस वक्त हर मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और उसके तहफ्फुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की इस घड़ी में कुछ मुल्कों ने पेट्रोल, डीजल और कीमियावी खाद को हथियारों के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया।
1: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी के काम और नजरियात से हमेशा तहरीक हासिल करती रहेगी। बैरूनी मुल्कों में वाकई भारत के सफारतखानों और कौंसिल खानों से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्रामों और दूसरे इज्तमाही प्रोग्रामों की खबरें महसूल हो रही हैं। सिंगापुर, चीन और हांगकांग में हजारों भारतीय बाशिंदे और उनके अरकान खानदान योम आज़ादी की तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने खित्ते के आवाम के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर शिल्प कैम्बुले ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमे, कौमी तराना और वंदे मातरम पेश किया गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके के करीब आज सुबह 7.7 शिद्दत का जलजला आया जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जलजले के 22 इमारतें मुनहदिम हो गईं, मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए और बड़े पैमाने पर खौफो हरास फैल गया। 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है जबकि 2 लोग लापता हैं। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई है जिसे सतह समंदर में कोई खास तब्दीली नजर न आने के बाद वापस ले लिया गया। बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और मुआसलाती निजाम में खलल की वजह से बचाव और इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क आज अपना 80वां योम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की योम आज़ादी तकरीबात की क्यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वजीर आजम ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंभों के लिए ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मैदनियात के शोबे में भारत एक काबिले एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक उसके साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाद ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों

0: के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने एक विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी।

0: इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
4: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण

0: प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
2: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसीना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय

श्रोताओं, 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने आज़ादी की सांस ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी ऐतिहासिक दिन पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के छोटे से कस्बे रानाघाट में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी कजरारी आंखों और सादगी भरी मुस्कान ने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सर्वकालिक महान और भावुक अदाकारा राखी गुलजार की। आकाशवाणी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, राखी जी एक साधारण बंगाली परिवार में पैदा हुई। पिता जूतों का बिजनेस करते थे। विभाजन से पहले परिवार पूर्वी बंगाल में रहता था, लेकिन बाद में वे रानाघाट आ गए। राखी का बचपन साधारण लेकिन संघर्ष भरा था। ये पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन जिंदगी ने इनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना था। परिवार की इच्छा से महज 16 साल की उम्र में इनकी शादी एक पत्रकार और बंगाली फिल्मकार अजय विश्वास से हुई, लेकिन शादी के दो साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए। मुश्किल वक्त के बावजूद राखी जी ने हिम्मत नहीं हारी। ये मुंबई आई और फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उस समय इंडस्ट्री में ना कोई इनका कोई रिश्तेदार था, ना कोई जान पहचान का सहारा। ये पूरी तरह अकेली थी, लेकिन इनकी सुंदरता, गंभीर अंदाज और बंगाली संस्कृति की छाप ने लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा। जिंदगी ने उस कठिन मोड़ पर जहां लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां राखी गुलजार जी ने अपनी आंखों में एक नया सपना सजाया। कैसे वो सपना साकार हुआ, ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए फिल्म शर्मिली का ये प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से एक ही कलाकार कार्यक्रम। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं राखी गुलजार, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे एक्ट्रेस राखी जी की जिंदगी से जुड़े उन अनसुने किस्सों की। इनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत बंगाली सिनेमा से हुई। 1967 में इन्होंने बंगाली फिल्म मधुभरन से अपने अभिनय की शुरुआत की। बंगाली सिनेमा में इनकी सादगी और प्रतिभा की तारीफ हुई, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन की नज़र इस बंगाली सुंदरी पर पड़ी और राखी गुलजार को एक्ट्रेस धर्मेंद्र के अपोजिट हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस एक ही फिल्म ने राखी को रातों रात स्टार बना दिया। इसके ठीक बाद फिल्म शर्मीली, जिसमें राखी गुलजार जी ने डबल रोल किया था कंचन और कामिनी की शानदार भूमिका निभाई। शशि कपूर के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म लाल पत्थर, पारस, आंखों आंखों में और जोशीला जैसी फिल्मों में भी राखी की अदाकारी को पसंद की गई। यश चोपड़ा जी की फिल्म दाग, अ पोएम ऑफ लव में राखी जी की एक्टिंग ने सभी को चौंका दिया। फिल्म के लिए इन्हें इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पर दोस्तों, राखी जी का अभी गोल्डन पीरियड बाकी था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी एक और खूबसूरत फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, राखी गुलजार जी की। श्रोताओं, 70 के दशक में राखी जी का जो करियर था वो टॉप पर था। फिल्म तपस्या में इनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी रिलीज हुई। इस फिल्म में राखी जी की भूमिका इतनी दमदार थी कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। आगे मुकद्दर का सिकंदर और शक्ति फिल्म में भी इन्होंने यादगार भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि शक्ति फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी की माँ की भूमिका निभाई थी। इसके बाद ये फिल्म त्रिशूल, जुर्माना और बसीरा जैसी फिल्मों में भी छाई रही। इनकी खासियत ये थी कि ये कम बातें बोलती थी लेकिन आंखों से बहुत कुछ कह देती थी। राखी जी ने कमर्शियल और कलात्मक दोनों तरह की फिल्मों में सफलता के झंडे गाड़े। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये अमर गीत। इसके बाद राखी जी की निजी जिंदगी और करियर के दूसरे दौर की बात करेंगे। फिलहाल आनंद लीजिए इस गीत का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं राखी गुलजार, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की, उनके प्रोफेशन से जुड़े पहलुओं की। तो चलिए अब बात करते हैं राखी जी की निजी जीवन में। ये उतना ही चर्चा में रही जितना इनका करियर रहा। फिल्मों में बिजी रहने के दौरान इनकी मुलाकात फेमस गीतकार, कवि और डायरेक्टर गुलजार साहब से हुई। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से प्रभावित हुए और 15 मई 1973 के को दोनों ने शादी की। इस साल इन दोनों की बेटी मेघना गुलजार का भी जन्म हुआ। मेघना भी आज एक फेमस डायरेक्टर है और जिसने कई शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं। दूसरी तरफ राखी जी ने लीड एक्ट्रेस के बाद फिल्मों में मां के किरदार को अमर बना दिया। 80 और 90 के दशक में राखी जी ने अपनी भूमिका बदल दी। वे मेन हीरोइन से माँ की भूमिका की ओर मुड़ी और यहाँ भी अपनी छाप छोड़ी। इस बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म कस्मे वादे का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, जहां कई एक्ट्रेस का करियर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वहीं राखी जी ने खुद को नए रूप में ढाल लिया। इन्होंने फिल्मों में मां के किरदार को यादगार बना दिया। फिल्म राम लखन में इनकी एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। करण अर्जुन फिल्म का वो डायलॉग याद है, मेरा करण अर्जुन आएगा, आज भी लोगों के जहन में है। इसके बाद बाजीगर, खलनायक, अनाड़ी और बॉर्डर जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने मां के किरदार को रियलिस्टिक बना दिया। राखी जी ने ये साबित किया कि उम्र बढ़ने के साथ कलाकार का महत्व कम नहीं होता, बल्कि अनुभव उसे और मजबूत बनाता है। दर्शकों ने इन्हें एक नई पहचान दी और नई पीढ़ी ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना पहले दिया था। इस बात पर चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म बेमिसाल का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे पास कुछ हमारे श्रोताओं के मेल आ गए हैं। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल्स और विलेस जनकपुरी सहारनपुर से, और ये हैं जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, रानी, गुरमत और मनु, और ये है दिल्ली बिरहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और डब्बू सम्राट का, और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा से वीना मस्कीन, आशीष राज, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केसु खुराना जी का, गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी और प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और आगे चलते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मधु, पहाड़गंज मुल्तानी, ढांडा से वडिंगा खेड़ा से पंजाब, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी का। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हमारी एक्ट्रेस राखी गुलजार जी के बारे में। आज राखी गुलजार जी का 79 साल की उम्र में मुंबई पनवेल के पास अपने फार्म हाउस में शांति से जीवन जी रही हैं। ये पशु पक्षियों की सेवा करती हैं, खेती बाड़ी में इनका इंटरेस्ट है और किताबें पढ़ने का इन्हें बहुत शौक है। अब ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करती हैं, हालांकि कभी कभी बंगाली फिल्मों में नजर आ जाती हैं। पिछले साल ही इन्होंने एक बंगाली फिल्म में काम भी किया था। सिनेमा में अपने इस योगदान के लिए इन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, राखी गुलजार जी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक मजबूत महिला की है, जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना किया और दूसरों के लिए मिसाल बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने विचारों, कर्मों और ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार थी वो थी राखी गुलजार। ये आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना, देखो कैसा पावन पर्व है। आज सुबेरे ते ही जगह जगह पे तिरंगा, घर घर तिरंगा लगे भए हैं और हर ब्रजवासी के मन में, हर देशवासी के मन में देशभक्ति की जो भावना है यह समय इन तिरंगान में प्रतीत है रही है।
1: हाँ जी जी, बिल्कुल सांची कह रही हो। कितना अच्छा और अनुपम, कितना बढ़िया लग रहा है।
0: देखो वंदना, ब्रज भूमि की अगर हम बात करें तो ब्रज में अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भए हैं जिन्होंने आजादी के दाई अपने प्राणन की आहुति भी दई और अपना सर्वस्व जीवन देश की सेवा में समर्पित किया हो।
1: हाँ जी जी, देखो हमारे देश को स्वतंत्र बनाए हुए के काजे वीर सपूतन ने खूब बलिदान दिए और हमारे देश को स्वतंत्र कर दियो। और जी जी, सब देशवासियों के दिल में अपने देश के काजे वो भाव हैं कि हमारा देश आजाद है और वो खूब अपने आजादी को जश्न मनावे और खूब पतंग उड़ावे, झंडा फहरावे, स्कूलन में खूब झंडा फहरते हैं और जगह जगह प्रतियोगिताओं में, और बहुत ही अच्छा लगे।
0: और तुम ये बात भूल गई वंदना कि जो स्कूलन में जो मिठाई बटाओ करें, बूंदी के लड्डू बटे, बूंदी बटे।
1: हाँ जी जी, हमारे जमाने में तो बूंदी बटती और बूंदी लेवे की काजे हम भागे चले जाते स्कूल और ड्रेस ऐसी प्रेस करके जाते और है तैयार है के। और जी जी, हमें खाइबे पीबे को तो शौक हतो ही हो।
0: और सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो तो भाग लेते।
1: हाँ जी जी, खूब सजधज के आजू बच्चा नाचे कूदे खूब स्कूल में।
0: तो जे याद है कि मैं एक बार बचपन में कवियत्री बनी आती और मैंने वीर रस की कविता खूब जोर जोर से पढ़ी।
1: अच्छा जी जी, पता है आपको हमारे कार्यक्रम में हूँ आज कवि गोष्ठी है और हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं खूब सारे कवि और कवित्री।
0: तुमने तो मेरी बात पकड़ ली है, हमने कवियत्री की बात करी तो तुम हो सब कवि सम्मेलन करवाए हुए लगी हो आज।
1: और का जी जी, जाते बढ़िया कहा बात होगी हमारे कार्यक्रम की।
0: तो कौन कौन आए रहे हैं आज ये तो बताए दो।
1: हाँ जी जी, देखो हमारे कार्यक्रम में मंजू शाक्य आई वही हैं, डॉक्टर सोहनलाल शीतल आए वही हैं और सुनीता कुमारी आई वही हैं, संग ही सुनील कुमार रहते हैं और बिनके संग के राजस्थानी हुआ हैं कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में।
0: तो श्रोताओं आनंद लियो या कवि गोष्ठी को।
2: नमस्कार, आज की या राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में मेरे संग मौजूद हैं आदरणीय श्रीमती मंजू शाक्य जी, के राजस्थानी जी, सुनीता कुमारी जी और सुनील कुमार जी, और मैं स्वयं डॉक्टर सोहनलाल शीतल। कवि गोष्ठी को आरंभ करवे से पहले मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वेदना भारती की तार तार हो जाए, वेदना भारती की तार तार हो जाए और मझधार भी हंसता कगार हो जाए, आओ मिलके यारो खिलाएं गुल कोई ऐसा, वतन की बगिया में फिर से बहार हो जाए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय मंजू शाक्य जी से कि वो आएं और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें।
3: ब्रज माधुरी के सब स्रोतन को मंजू शाक्य की राधे राधे। और जैसे सबन को पता है कि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आज बात करें कुछ वीरन की जिनने जा देश पे जान दे दी। तो ऐसे एक वीर की पार्थिव शरीर पड़ो है और वह शरीर को देख के बाकी माता पिता घर वालन को का हाल हेरो है। एक छंद के माध्यम से आप सबन तक पहुँचा रही हूँ। सुनो, छलक उठो है माँ के आंचल से दूध और, छलक उठो है माँ के आंचल से दूध और, लाल रंग है गयो है आँखियों के पानी को, श्वेत रंग में लिपट बोली वीर वधु आज, बेरंग भयो है रंग सारी जिंदगानी को।
4: बहुत बढ़िया।
3: बहना बोली रोए रोए मेरी छोड़ो भैया काहे, बहना बोली रोए रोए मेरी छोड़ो भैया काहे, आयो ना ख्याल तुम्हें बिटिया सयानी को, पी के निज आंसुओं को, पी के निज आंसुओं को दे रहे सलामी तात, नैनन से चूमे भाल वीर बलिदानी को, नैनन से चूमे भाल वीर बलिदानी को। अब स्वतंत्रता दिवस के बाद ही रक्षा बंधन आया जाता है, पता है आप सबन को। अब राखी आएगी तो बहन परेशान हो रही भैया के फोटो को देख देख के और का कह रही है, सुनो।

0: पहले रही
1: रही
0: राखी
1: बाकी
0: बोल।
1: फोटू तबीर तू आ जाना राखी बुलाए रही है। तो ऐसे जाने कितने वीर हैं जो
0: स्वागत
1: हमारे भारत भूमि की माटी की रक्षा करते हुए शहीद
0: स्वागत
1: है गए हैं। तो आज
0: स्वागत
1: मेरा मन है कि एक कहानी सुनाए तुम्हें भारत की,
0: स्वागत स्वागत
1: एक
0: स्वागत
1: गीत के माध्यम से सबन तक पहुंचा रही। सुनो कि चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे
0: बहुत
1: की।
0: अच्छे।
1: चलो आज

रंग को झंडा अंबर लो फहरो, तीन रंग को झंडा अंबर लो फहरो, लाल हरो केसरिया रंग बड़ो गहरो, जाके बीच चक्कर है नीलो कहानी, भारत हमारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी, भारत हमारे की। किराणा शिवाजी भगत सिंह जैसे अन

0: बहुत सुंदर।
1: रानी भाई वीर लक्ष्मी के जैसी, रानी भाई एक लक्ष्मी के जैसी, करी अंग्रेजन की ऐसी की तैसी, बन के लड़ी जमरदानी कहानी, भारत हमारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की, कि जल थल गगन में रहे जा की सेना, जल थल गगन में रहे जा की सेना, बैरिन को चब्बा वेलोए को चलेना, दुश्मन भर आए पानी कहानी भारत हमारे की, दुश्मन भर आए पानी कहानी भारत हमारे की। और का कह सुनो,
2: स्वागत
1: की रानी पद्मिनी थी चंदा सी गोटी, खिलजी की नीयत भई हाय खोटी, ज्वाला में कूदी है रानी कहानी भारत हमारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की, कि सोने की चिड़िया सो जू देश मेरो, सब धर्मन को है जाई मैं डेरो, बहे गंग जमुना को पानी कहानी भारत हमारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की, कि गौतम महावीर नानक की वाणी, गौतम महावीर नानक की वाणी, राम सिया काना की धरती है धानी, और देव की यशोदा सी मैया कहानी भारत हमारे की। चलो।

0: चलो आज सुना मैं कहानी भारत हमारी की या सरस काव्य पाठ के साथ। धन्यवाद, बधाई आपको मंजू जी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय के राजस्थानी साहब से आए और काव्य पाठ शुरू करें। आदरणीय राजस्थानी जी,
1: आभार। आदरणीय सभी श्रोतन को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज़ादी हमारे शहीदन की धरोहर है। आज भी जब जब माँ भारती पे कोई संकट आयो है, भारत माँ के लाडले अपने सर्वोच्च बलिदान देवे को हमेशा तैयार रहे।
0: स्वागत।
1: तो प्रस्तुत है
0: स्वागत।
1: इकोला तो लाल जा को।

0: खेल छवीलो बाको, मैया को दुलारो लाडू प्यार ते संभारो है।
1: बहुत अच्छा।
0: नजर न जाकू लगे सोए सब भाग जगे, खूब सी बलैया लेके यार तो उतारो है। दुख बाबा भाप जाए करे जा सो कहाँ पे जाए, बड़ो ही संभार राखो आखिन को तारो है।
1: हाँ
0: धन्य ऐसे मैया बाबा की ओ कब पछतावा, भारती को सौंपो जब देश ने पुकारो है।
1: बहुत अच्छा,
0: भारती
1: बहुत
0: को
1: अच्छा।
0: सौंपो जब देश
1: देश ने
0: ने
1: पुकारा है,
0: पुकारो है।
1: वही बात।
0: बहना की राखी छोड़े जाने कैसी प्रीत जोरी, मैया ते यू चलो आज मुख गए हो मोड़ के। आखिन को तारो प्यारो बुढ़ापे को एक सारो, बाबा की भी आस प्यास सब गए हो तोड़ के। सीमा से बुलावो आयो संकट में देश पायो, मेहंदी रची थी हाथ हाथ गयो छोड़ के। भारती की आरती के थार में चढ़ाए वे शीश, रंग तेरंगा जिया बांको गयो ओढ़ के।
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: रंग
1: सुंदर,
0: तेरंगा जिया बांको गयो ओढ़
1: बहुत
0: के।
1: अच्छे भाई।
0: आजादी के दीवाने निकी, आजादी के
1: दीवाने
0: दीवाने
1: की
0: निकी,
1: कमी
0: कमी
1: ना या
0: नहीं
1: देश में।
0: जाते समय, खोजे तो घर घर मिल जावे भगत
1: भगत
0: सिंह
1: सिंह
0: के
1: के वेश
0: वेश
1: में।
0: में।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे,
0: अब
1: बहुत अच्छे।
0: शहीदन के दम पर आज हमारा तिरंगा आसमान से बातें कर रहे हो है,
1: कैसे कर रहे हो? स्वागत है भाई,
0: कैसे कर रहे हो
1: तो
0: है?
1: बताओ।
0: प्रस्तुत एक गीत,
1: स्वागत।
0: जाने जी विश्व समूचो मेरो रहे
1: रहे तिरंगा
0: तिरंगा
1: ऊंचो। बहुत अच्छा
0: ऊंचो।
1: भैया, बहुत अच्छा।

0: आखिरी दो
1: स्वागत
0: पंक्तियां,
1: स्वागत
0: भले रचे षड्यंत्र जतन जे करें मानसिक रोगी, आजादी तो गंगा है जे कबहु न मैली होगी। आजादी तो गंगा है जे कबहु न मैली।
1: बहुत सुंदर राजस्थानी साहब, राधे
0: राधे।
1: सरस काव्य पाठ के लिए, और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय सुनीता कुमारी जी से, तिरंगा को और ऊंचो करते हुए, मान बढ़ावत हुए राष्ट्रीय चिन्हों को प्रस्तुत करें आदरणीय सुनीता कुमारी जी।
2: सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस की सभी को मैं बधाइयाँ दे रही हूँ, और अपने कुछ छंदों के माध्यम से
1: स्वागत
2: तिरंगा को मान भी रखने की कोशिश कर रही हूँ।
1: स्वागत स्वागत।
2: सुनियो, आजादी को नीको पर्व है या नूटो ही है गर्व, फर फर फहराए कहे रो तिरंगा है। फर फर फहराए कहे रो तिरंगा है, करे बलिदान वीर जीवन अमर कियो, खुशियों से मन सब करे गए चंगा है। वंदे मातरम गीत गावे सब हिले मेले, वंदे मातरम गीत गावे सब हिले मेले, दिखे ये कथा को रूप रंग बिरंगा है। सभी संग संग भारती के आंगन में ऐसे मिटाए सब नफरत दंगा। और मैं आगे भी यही प्रयास करूंगी कि हमारे देश का ये तिरंगा हमेशा अमर रहे। सरहद की सुरक्षा में गवाए जिन प्राण, भारती के ऐसे वीर पूतों को नमन है। मन को लोभावत

0: के जाके सौरव सौराष्ट्रीय चमन है। कर दिन सार देह मात्र भूमि ने हमाए, भारत की माटी बीच भय जो रमन है। सुनीता की लेखनी की बस यही अभिलाष, लिख लेके बारू सदा श्रद्धा के सुमन।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: लिख लेके बारू सदा
1: श्रद्धा के सुमन, लिख लेके बारू सदा श्रद्धा।
0: और जैसो के हमारा देश देख भी मुँह अति सुंदर लगे है,
1: स्वागत है।
0: तो मैं उस पर भी चार पंक्तियां पढ़ने को प्रयास करूँ। सिंधु नदी दीप नग भरते उफान रग, ऐसोनी को रूप नित नैन सुनिहारू। ऐसोनी को रूप नित नैन सुनिहारू में, और ऊंची ऊंची चोट न से देवदार चीड़न की, मीठी मीठी बातें सुने निज ही हारू में। मीठी मीठी बातें सुने निज ही हारू में, मनोहारी रूप देखूं एकता को भिन्नता में, बैर भाव देश सब मन ते निकारू में।
1: क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: गाथाएं भरी रहे सुनीता मन, माता भारती की नित्य
1: आरती उतारू में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनीता जी, बहुत अच्छा।
0: आरती उतारू में,
1: बहुत सुंदर।
0: और अंतिम छंद में, आओ मिल के उठाए हाथ में तिरंगा आज, आजादी को ताज सिर रखियो सजाए के।
1: बहुत अच्छे।
0: खुशियां मनाए बैर दिल से निकारे दियो, आपसी मिलाप मेल रखियो बचा तोड़ियो ना एकता की अपनी पुरानी डर, मन निज वतन को रखियो बचाए के। जनगण मन धुने सदा रहे जिंदाबाद, दुनिया के आगे रूप रखो चमकाए।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: आगे रूप रखो चमकाए।
1: बधाई सुनीता जी सरस काव्य पाठ के लिए। और अब मैं अनुरोध कर रहे हूँ आदरणीय भाई सुनील जी से कि आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें।
2: सबन को नमस्कार। एक मुक्तक के माध्यम से मैं बीरन को नमन कर रहा हूँ।

0: सरहद पे। वाह क्या कहने के लिए,
1: जाग
0: बहुत
1: रहो
0: अच्छा।
1: है अचल पहरुआ ले अंगड़ाई सरहद पे। और या आजादी है पाएवे, कितने वीरन ने प्राण गमाए हैं, या मुक्तक के माध्यम से मैं कहवे की
0: स्वागत
1: कोशिश कर
0: स्वागत
1: रहा
0: है
1: हूँ।
0: स्वागत है स्वागत है।
1: या आजादी के कारण भी रन ने प्राण गमाए
0: बहुत
1: हैं,
0: सुंदर
1: हंसे हंसे फांसी फंदा चूमे शीश कबहू न
0: बहुत
1: झुकाए
0: अच्छे बहुत
1: हैं।
0: बढ़िया।
1: आवो मिलके बंधन
0: बंद
1: कर ले देश के अमर शहीदन को, जिनके बलिदान ते हमने
0: आए
1: जे उजियारे
0: पाए हैं। वाह
1: पाए
0: वाह वाह
1: हैं,
0: बहुत अच्छे बहुत
1: जिनके
0: सुंदर।
1: बलिदान ते हमने जे
0: उजियारों पर
1: उजियारे
0: पाए हैं बहुत
1: पाए
0: सुंदर है।
1: हैं। और अगला मुक्तक निवेदन कर रहा हूं,
0: स्वागत
1: का
0: स्वागत।

0: गमन ताई
1: बहुत बढ़िया।
0: खातिर मिलके हम संघर्ष पंथ पे करें
1: बहुत बढ़िया,
0: गमन।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये अंतिम मुक्तक फिर
1: स्वागत
0: एक गीत निवेदन करूंगा।
1: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
0: बैर बिसानल दूरी करो सब,
1: आए आए बैर
0: प्रीति
1: बिसाने।
0: पुष्प बरसाई चलो।
1: क्या होता है,
0: बैर
1: क्या बिसाएंगे।
0: बिसानल दूरी करो सब, प्रीति पुष्प बरसाई चलो।
1: बहुत अच्छे गीत।
0: हारन

0: भाई चलो
1: बहुत सुंदर,
0: और
1: बहुत
0: एक
1: बढ़िया।
0: गीत और निवेदन कर रहा
1: स्वागत
0: हूँ।
1: है, स्वागत है, स्वागत है।
0: शोक को सागर बहुत देखो हमारे देश ने,
1: हाय हाय।

0: भूले मत ऊसरु बहुत देखो हमारे देश ने,
1: बहुत अच्छे हैं भाई।
0: भूले मत ऊसर बहुत देखो हमारे देश
1: बहुत
0: ने,
1: सुंदर।
0: मुश्किल

0: बहुत सुंदर, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: सुंदर,
0: सुना जी, बहुत
1: वाह
0: अच्छे
1: वाह।
0: बधाई।
1: और अब तक जो हमें काव्य पाठ कराए रहे, मैं अब उन्हीं को आवाज दे रहा हूँ कि डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी आमे और अपनों काव्य पाठ करें। डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी,
0: धन्यवाद सुनील जी, राष्ट्र कवि गोष्ठी को अंतिम रूप देते है, क्योंकि अभी कोशिश करिए
1: स्वागत
0: कि
1: है।
0: वेदना भारती की तार तार हो जावे, वेदना भारती की तार तार हो जावे, और मझधार हूँ हंसतो कगार है जावे,
1: हाँ
0: और मझधार हूँ हंसतो कगार है जावे, आओ मिलके यारो खिलाए गुल कोई ऐसो, आओ मिलके यारो खिलाए गुल कोई ऐसो, वतन की बगिया में फिरते बाहर है जावे, वतन की
1: वाह
0: बगिया
1: बहुत
0: में
1: बढ़िया,
0: फिरते बाहर
1: वाह।
0: है जावे। और यही बात को आगे बढ़ावा तो भाई कह भी कुछ करिए कि प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके, प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: जरूर, बहुत
0: प्रेम
1: बढ़िया,
0: प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: क्या
0: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के मनावेंगे,
1: बात,
0: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के
1: वाह
0: मनावेंगे,
1: वाह वाह वाह,
0: बैर
1: बहुत
0: भाव
1: सुंदर,
0: दोष सवै बिसराय के,
1: वाह
0: बैर भाव दोष सवै बिसराय
1: बहुत
0: के,
1: सुंदर।
0: राग अनुराग गूंजे चारों ओर,
1: अच्छा,
0: बैर भाव दोष सवै बिसराय के, राग अनुराग गूंजे चहु ओर, जात पांत की दीवार नकू मिलके आज गिरावेंगे,
1: हाँ,
0: जात
1: जाति पांत
0: पांत की
1: की, बढ़िया
0: दीवार
1: सुंदर,
0: नकू
1: बढ़िया सुंदर,
0: मिलके आज गिरावेंगे, और प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: बहुत बढ़िया,
0: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हंस हंस के
1: वाह
0: मनावेंगे,
1: वाह वाह वाह
0: स्वतंत्रता
1: वाह,
0: के
1: बहुत
0: पावन पर्व
1: अच्छा,
0: को हम हंस हंस के मनावेंगे, जिन राहन पे
1: हाँ।

0: जिन राहन पे चल के अपनो शीश सपूत गए, जिन राहन पे चल के अपनो शीश सपूत चढ़ाए गए, उन्हीं कदमन पे चल के हम भारत को मान बढ़ावेंगे। जिन राहन पे चल के अपनो शीश सपूत चढ़ाए गए, उन्हीं कदमन पे चल के हम भारत को मान बढ़ावेंगे। ऊंच नीच की रीत नहीं चलने देंगे, और ऊंच नीच की रीत नहीं चलने देंगे। मानवता के दीप जराए के मनसो मन को मिलावेंगे, मानवता के दीप जराए के मनसो मन को मिलावेंगे, और प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे। कि अमर के सिगरे, अमर के सिगरे चंदा तारे तोर धरा पे लावे, कि अमर के सिगरे चंदा तारे तोर धरा पे लावे, भारत माँ की चुनरिया में नग की तरह सजावेंगे, भारत माँ की चुनरिया में नग की तरह सजावेंगे, और स्वतंत्रता के पावन पर्व को हंस हंस के हम मनावेंगे। कि लूट फूट के बीज, कि लूट फूट के बीज जो बोवे स्वार्थ में मगन सदा, लूट फूट के बीज जो बोवे स्वार्थ में मगन सदा, एक ही माँ के लाल है सब ही हम जे उनको समझावेंगे, एक ही माँ के लाल है सब ही हम उनको समझावेंगे, और स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के मनावेंगे। और भारत भूखी छवि तो प्रेम पगी और वीर प्रसूति सोहन, लाज तरंगे की रख के हम जग में नाम कमाएंगे, लाज तरंगे की रख के हम जग में नाम कमाएंगे। और यही क्रम में एक छोटी सी गीत का और निवेदन कर रहे हूँ, झुकवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। और हल्ला जात पात को बहुत है रहो चारों ओर, हल्ला जात पात को है रहो चारों ओर, ऐसे समय में प्रेम गीत गाएवे की बात कर। और कैसो ही जुलम होए, कैसो भी जुलम होए, देवे को जवाब सही सही, हाथन में लेखनी उठाएवे की बात कर, और झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे उन्हें उठाएवे की बात कर। चल रही हैं नफरतों की आंधियां जहां में अब, वहां एक प्रेम दीप जलाएवे की बात कर, वहां एक प्रेम दीप जलाएवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, और जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। सहज में ही मिटेंगे सिगरे कष्ट तेरे,
2: सहज में
0: ही मिटेंगे सबरे कष्ट तेरे, दूसरे नके काजू बनाएवे की बात कर, दूसरे नके काजू बनाएवे की बात कर, न झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। और सोहन जो मानस हैं भाग्यहीन जगमाही, सोहन जो मानस हैं भाग्यहीन जगमाही, उनके भाग्य बनाएवे की बात कर, न झुकवे की बात कर, न झुकाएवे की बात कर, और झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर। और मैं इन्हीं पंक्तियों के संग आज के कवि गोष्ठी को यहीं विराम दे रहा हूं। नमस्कार।
3: अभी श्रोता 15 अगस्त पर विशेष ब्रज कवि गोष्ठी सुन रहे हैं। या में प्रतिभागी कवि है मंजू शाक्य, डॉक्टर सोहन लाल शीतल, सुनीता कुमारी, सुनील कुमार और के राजस्थानी। तो श्रोताओं, या के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
4: मुकु यानी के वंदना को
3: और मोई यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति। राधे राधे, राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
4: विवेक कुमार तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रज माधुरी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं नाटक। आइए सुनते हैं नाटक हुल हुल संथाल। ये नाटक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू और कान्हू मुर्मू पर आधारित है। लेखक योगेश अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: बुरा होगा, गरीब की हाय लगेगी इनको। मेरी जमीन के टुकड़े से कितना अमीर हो जाएगा। ले ले ले ले मेरी जमीन, ले ले बना ले अपना महल मेरी जमीन से कमा के। धोखेबाज कहीं कहां।
2: ये तो चांद है, कहा हुआ इसे, काहे इतना बेचैन सा आ रहा है। चांद बेटा, ओ चांद बेटा, अरे कहा हुआ रे, कहा सरपट भागा जा रहा है। अरे दिल्ली की ट्रेन छूट रही है का?

0: अरे तुम लोग तो रो रहे हो।
1: अरे का हुआ, कछु बताएगा भी चांद?
2: जय जोहार बाबा।
1: जय जोहार, आओ आओ बैठो और अब बताओ कि हुआ का है।
3: बाबा मेरी जमीन मेरे पड़ोसी के दोस्त ने हथिया ली। मैंने उसे 3 साल के लिए बटाई पर दी थी, पर उसने मेरे सामने झूठे कागज धर दिए कि ये जमीन मैंने उसे बटाई पर नहीं दी थी बल्कि मैंने उसे बेची थी। पर बाबा बाबा भगवान भोगा की कसम, मैं क्यों बेचूंगा? मैं अपनी जमीन क्यों बेचूंगा? अपने बाप दादा की जमीन को मैं क्यों बेचूंगा? मैं तो सच्ची उसे बटाई पर ही देकर गया था।
2: बाबा आप ही बताओ, इसके अलावा हमारे पास है ही का? हमारी धरती गई तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा बाबा?
3: बाबा बाबा यहाँ हमारी जिंदगी लूट रही है और तुम हंस रहे हो? हमारी बात से हम धरती ना थी तो रोका क्यों था? चल भैरवी चल, इस गांव के तिक्कू क्या अपने क्या सब दुश्मन हैं, हंसते हैं हम पर जैसे हमने उसे लूट लिया हो। अब हम मरे या इस गांव से जाएं, ना हमें रोकना ना हमें टोकना।
1: अरे चांद, अगर ये गुस्सा तूने उस बाहरी आदमी यानी दिक्कू को दिखाया होता तो आज तुझे रोना ना पड़ता।
3: बाबा तुमको पता भी है कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे मैं ठहरा गरीब किसान, उसके पास पैसा है, अपने लोग हैं, वो तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है ना बाबा। हमें मरवा भी सकता है। और मेरी जवान बहन कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरा क्या होगा बाबा?
1: मत भूल चांद कि तू एक संथाल है जिसकी रगों में सिद्धू और कान्हू का खून बहता है, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्होंने अपने साथियों को मालगुजारी के बढ़ते दामों के आतंक से, जमींदार दरोगा और महाजनों के अत्याचार से मुक्त कराया था। तेरी रगों में उनका खून बहता है। उन्होंने संथालों को एकजुट करके हूल हूल संथाल कर दिया था और तू रोकर आ गया।
2: हुल हुल यानी विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह तो आसान है पर उस दिक्को के खिलाफ हम कैसे विद्रोह कर सकते हैं बाबा? हम दोनों के पास है ही क्या?
1: हमारे खून में गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा है बेटी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम दोनों सुनो सिद्धू और कान्हू की कहानी, फिर बताना कि गलत बात पर तुम्हारा खून खौलेगा या नहीं। बैठ बेटी बैठ और शांति से ये कहानी सुनो। बात है कोई 1815 की, जब सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ था और 1820 में कान्हू मुर्मू पैदा हुआ था। इनके और दो भाई भी थे। अरे एक तो तेरा हम नाम ही था चांद, और एक भैरव।
2: अच्छा।
1: दो बहनें भी थीं, फूलो और झानो मुर्मू। ठीक ठाक परिवार था, हंसते खेलते काम करते गाते गुनगुनाते जिंदगी कट रही थी। पर अंग्रेजों को कहां हंसता खेलता कोई गांव पसंद आना था। उन्होंने इनके गांव भोगनाडीह की जमीन पर मालगुजारी लगा दी।
3: अच्छा।
1: जबकि अंग्रेजों ने जमीन देते वक्त ऐसी कोई शर्त ना रखी थी। भोगनाडी गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जो अंग्रेज सरकार ने आप लोगों को मुफ्त में जमीन दिया हुआ था उस पर अब आप सभी को मालगुजारी देना पड़ेगा। समय पर मालगुजारी ना देने पर सजा भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।
4: ये क्या बात है?
5: अरे ये तो गजब हो रहा है। जमीन देते हुए तो ये बात ना कही थी कि जमीन पर मालगुजारी देना पड़ेगा।
2: अरे इन लोगों में कोई दया ममता तो होता नहीं है। जिसकी जमीन चाहिए हथियाली, एक बार

0: बिना सोचे इन गोरों ने कितनी मुश्किल से हमें ऐसी उपजाऊ जमीन मिली थी जिसे दिन रात एक करके हमने रहने बैठने और खेती के लायक बनाया।
1: कैसे जिएंगे हमारे बच्चे, कैसे खाएंगे पिएंगे? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम ना हम अपनी जगह नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे।
2: जो माल गुजारी 1836-37 में 2611 थी वो 1854-55 तक 58,033 रुपए हो गई थी।
3: क्या कह रहे हो?
2: और क्या, एक गरीब किसान के लिए ये देना असंभव हो रहा था। तब तक सिद्धू और कानू भी जवान हो चुके थे। उनके कानों में ये बात पड़ी तो उन्हें ये गवारा ना हुआ कि उनके बाप दादाओं ने जी तोड़ मेहनत करके पूरे जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाया। इतना लाभ नहीं हो रहा था जितना मालगुजारी देनी पड़ रही थी।
3: तो बिल्कुल सही किया।
2: तो सिद्धू और कान्हू ने गांव में एक सभा बुलाई और ऐलान किया।
4: भाइयों बहनों, आज इस सभा को बुलाने का कारण ये है कि अंग्रेजों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: हमारे बाप दादाओं को उन्होंने छोटा सा जंगल दिया था और उन्हीं की मेहनत से ये जंगल इतना बड़ा बन पाया। आज हम उस पर खेती करके अपना अपने परिवार का पेट भरते हैं। इन अंग्रेजों से कोई मदद नहीं लेते, ऊपर से माल गुजारी भी देते हैं।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
5: भाइयों और बहनों, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि अंग्रेज हमारी धरती पर आकर हमें ही हमारी धरती बेचता है।
1: बिल्कुल सही बात हो रही है। मतलब
5: और हम कुछ नहीं कहते, मेहनत हम करते हैं, वो माल गुजारी के मनमाने दाम लेते हैं।
1: अब नहीं चलेगा पर।
5: सही कह रहे हैं। हम फिर भी कुछ नहीं कहते, वो हम पर ही एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हें जमीन दी है। हम तब भी कुछ नहीं कहते, पर उन्होंने माल गुजारी का दाम इतना कर दिया है कि वो देना अब हमारे बस की बात नहीं है।
1: नहीं है,
5: क्या है? साल का 58,033 रुपया कहाँ से देंगे हम?
1: कहाँ से देंगे?
5: अंग्रेज सरकार की माल गुजारी का भर एक संथाल विरोध करेगा,
6: विरोध करेगा,
5: विरोध करेगा।
4: हम इनके अत्याचार को अब और नहीं सहेंगे,
6: नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
4: हम इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाते हैं।
6: हुल हुल संथाल,
7: हुल हुल संथाल,
6: हुल हुल संथाल।
2: फिर क्या हुआ? होना कहा था बेटा, इतने समय से हो रहे अत्याचार को कोई कितना सहेगा। अरे ना भी किसी में हिम्मत हो पर वो मरते मरते भी बगावत जरूर करेगा। ये थी संथालों की भावना। अंग्रेजों को क्या पता था कि जिन लोगों को वो कुछ नहीं समझ रहे वही लोग उनको नाकों चने चबवा देंगे।
3: ये बात,
2: अंग्रेजों ने संथालों से माल गुजारी वसूल करने के लिए भागलपुर में एक अंग्रेज कलेक्टर को बहाल किया और उसकी मदद के लिए कुछ तहसीलदार भी नियुक्त कर दिए। वो लोग थे तो अपने, पर थे अंग्रेजों से भी ज्यादा बदनीयत, लालची और घूसखोर, और संथालों के साथ अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार करते थे। संथाल गरीब तो थे ही, तो हर काज के लिए उन्हें महाजन के आगे हाथ फैलाने पड़ते। दुष्ट महाजन 2 रुपया देता और वसूल मरने के बाद तक करता रहता, और इतना पैसा लेने के बाद भी फौजदारी का मुकदमा कर देता कि इन्होंने पैसा दिया ही नहीं। इन बेचारे गरीब संथाल किसानों को जंगीपुर जो बंगाल में है उतनी दूर जाना पड़ता। एक तो गरीब, ऊपर से झूठे मुकदमे, और उनका भी परिणाम संथालों के हक में नहीं होता।
3: फिर क्या हुआ बाबा?
2: संथालों की जिंदगी महाजनों से कचहरी और कचहरी से पीछा छुड़ाने के लिए फिर महाजनों के आगे हाथ फैला देती। यानी कुल मिलाकर उनकी जिंदगी एक गेंद की तरह थी जिसे कोई भी लात मार देता था। एक घटना ने संथालों की सहन शक्ति को चुनौती दे दी।
3: आज का
8: सुनो, पापड़ के पूर्वी इलाके

0: में रेल लाइन बिछाई जा रही है।
1: रेल लाइन बिछाई जा रही है?
0: हाँ, मजदूरों की जरूरत है, औरत मर्द दोनों की आवश्यकता है।
1: हमें नौकरी मिलेगी,
0: जल्दी पहुँचे, अपना नाम लिखाए।
2: ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी खबर है। ये तो हम भी चले,
3: चलो। अरे रो क्यों रही हो?
4: मैं वह काम नहीं करूंगी।
5: काहे?
4: उस गोरे ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की।
5: कौन गोरा था? कौन था?
4: मेरे आदमी ने विरोध किया तो उसने उसको खाई में फेंक दिया।
5: बात कर रहे हो?
4: नहीं। अब क्या होगा मेरे बच्चों का? हमारी कोई सुनने वाला नहीं।
3: चलो सिद्धू, कानू, चांदो, भैरव के पास चलते हैं।
1: सही बात है, सही बात है।
3: कुछ तो करना होगा वरना मरना होगा।
1: हाँ सही बात है, चलो चलो। अरे सिद्धू, कानू तो यही चले आ रहे हैं। सिद्धू देखो तो।
6: हमें पता है रमालू, हम वहीं से होके आ रहे हैं। हर औरत की यही रामकथा है वहाँ। देखो साथियों, अब पानी सिर से गुजर चुका है। अगर हमारी बहन माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हमारे होने का क्या फायदा?
1: हमें अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा।
7: सबक नहीं साथियों, इनको अब जल से उखाड़ना होगा,
8: जल से उखाड़ना होगा।
3: सिद्धू, कानू, आसान है उन्हें उखाड़ फेंकना क्या? उनके पास सेना है, आधुनिक हथियार है। हमारे पास चार पैसे नहीं है अपनी गर्दन महाजनों से छुड़वाने के लिए, और तुम अंग्रेजों के खिलाफ फूल की तैयारी कर रहे हो।
6: आप सब बिल्कुल सही हैं, पर जब हमारे भगवान मरांग गुरु और जाहिर आयो निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता के इस संदेश को देश के कोने कोने में फैला दो, ताकि सभी लोग भावी संकट का मुकाबला करने को तैयार हो जाएं, तभी तुम लोग पूर्व की भांति स्वतंत्र रह सकोगे।
7: तो हम आज ऐलान करते हैं, हम सब आज से और इसी वक्त से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं।
1: और हम घोषणा करते हैं कि सिद्धू कान्हू मुर्मू हमारे सूबा होंगे, यानी राजा होंगे, भैरव चांदो सेनापति।
7: हम घोषणा करते हैं कि चूंकि अब हम आजाद हैं, तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का कोई भी सरदार नहीं होगा, ना ही कोई हाकिम और ना ही कोई थानेदार। कोई नहीं होगा। और ना कोई कर देना होगा, ना किसी मालगुजारी का भार हम पर होगा। अब अपना, केवल अपना संथाल राज स्थापित होगा, स्थापित होगा, संथाल राज स्थापित होगा।
6: अब हम प्रति भैंस के हल पर चार आना और बैल के हल पर दो आना अपना मालगुजारी दिया करेंगे, और कर्ज का सूद भी रुपए में सिर्फ एक पैसा प्रति वर्ष देना होगा।
9: साहेब,
1: अरे क्या हो गया?
9: अरे गजब हो गया, गजब हो गया।
3: संथालों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
1: विद्रोह कर दिया?
3: हमारे थाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथियों को छोड़ना होगा वरना अच्छा नहीं होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि जमींदार महाजन और अंग्रेजी सरकार का नाश हो।
1: ओ अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? ये लोग न पेट में रोटी न तन पे लगोटी, ये मेरी सत्ता को चुनौती देंगे। दिखाता हूँ इन्हें इनकी औकात। बताओ तो, अभी तक जो हमारे आगे सिर झुकाकर बात करते थे, उनमें इतनी साहस आ गया कि हमारा नाश करने के लिए आवाज उठाएं? कौन है इनका नेता?
3: साहब, नेता नहीं, इनका सूबा। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना राजा चुन लिया है, सिद्धू कानू मुर्मू।
1: क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया इन्होंने? वाह भाई वाह, जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उनके राज्य में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वाह भाई, मिलना पड़ेगा इन एक फसली के राजाओं से। इन्हें तुरंत पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो।
3: जी साहब।
10: फिर क्या हुआ बाबा? सिद्धू और कानू को मार दिया थानेदार ने?
11: अरे पगली, संथालों ने उस थाने

0: दार पर ऐसे तीर बरसाए कि वो वहीं ढेर हो गया। हूल हूल संथाल,
1: हूल हूल संथाल,
0: ये कहकर उन्होंने अपने विद्रोह का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने संथालों को यूं ही समझा सोचा कि इनको तो वो एक उंगली से दबा देंगे। इनके पास हिम्मत थी, एकता थी, और उन्होंने अपने बर्छे भाले और तीरों से फुदकपुर गांव और साहेबगंज में ऐसा आतंक मचाया कि इनके तीर कमानों के आगे अंग्रेजों की बंदूकें भी मात खा गईं।
2: अच्छा,
3: अरे छोड़ेंगे नहीं,
4: शाबाश शाबाश मेरे जाबाज लड़ाकों, हमें अपनी जमीन खाली करानी होगी इन अंग्रेजों से। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो,
5: करो या मरो,
6: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो,
7: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो,
8: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो,
9: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
10: शांत, कल सिद्धू साहेबगंज वहां धावा बोलेंगे।
4: इन्होंने हमारे साथ, हमारे देश के साथ बहुत बुरा किया है, बस ये याद रखो। अपने तीरों को पैना करो और बर्छे भाले तेज करके रखो।
10: हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे रास्ते और कठिन होते जाएंगे, तो चांदो और भैरो तुम अपने साथियों को घर घर गांव गांव भेजो हमारे भगवान के इस संदेश के साथ कि उनका हुक्म है कि अंग्रेजों से अपनी माटी आजाद करानी होगी।
11: माटी आजाद करानी होगी,
10: उसके लिए हर एक संथाल को अपनी कुर्बानी देनी होगी। हर संथाल अब घर में नहीं, युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए, युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए।
0: संथाल जिनके पास ना अच्छे हथियार ना कोई अच्छी रणनीति, पर था तो सिर्फ हौसला और अपने भाइयों का साथ।
12: साहिबगंज में क्या हुआ बाबा?
13: बाबा
0: अरे भैरवी, होना क्या था, सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नाम सुनते ही अंग्रेज नावों में सवार होकर नदी पार पहुंचने की तैयारी में थे।
12: अच्छा?
0: पर संथाली सेना ने नदी की ओर अपने तीरों की ऐसी बाढ़ छोड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों की कई नौकाएं नदी में ही डूब गईं।
12: बाबा ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी पर फिर भी वो सिद्धू और कान्हू मुर्मू से डर कर भाग रहे थे। सच में ये सोचकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि संथालों ने अत्याचार और शोषण के विरुद्ध ही नहीं अपनी भी आजादी का बिगुल बजा दिया था।
0: अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि जिनके तन पर कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, उनसे मुकाबला जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर बेटी, अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो अपने पैंतरों और चालबाजी से कहां बाज आने वाले थे।
10: साथियों, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए हैं आप लोगों ने, अब वो और कड़ी योजना बना रहे होंगे हमारे विरुद्ध। हमें खबर मिली है कि अंग्रेज कप्तान फगान के अधीन सरकार ने एक फौज की टुकड़ी भेजी है जिसमें 500 सैनिक हैं। बेलापुर पहुंचने वाली इस टुकड़ी में पहाड़िया सैनिक भी हैं।
14: कोनो चिंता की बात नहीं है भैया,
10: चिंता की बात नहीं है भैया।
4: तो हमारी रणनीति भी यही रहेगी कि हम भी पहाड़िया युद्ध करेंगे जिसमें ये अंग्रेज सैनिक हमारे सामने कुछ समय भी नहीं टिक सकेंगे। चलो साथियों, मरो या मारो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो,
15: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो,
16: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो,
17: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो,
18: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
4: हमें दुख है कि इस युद्ध में हमारे बहुत से कुशल नेता मारे गए हैं, पर खुशी की बात यह है कि अंचल भागलपुर कहलगांव परगना के राजमहल तृतीय से रानीगंज तक के हम स्वामी हैं।
19: yeah!

0: आपत्ति है वहाँ पर।
1: और यहाँ रहते हुए हमें 15 दिन हो चुके हैं, तो अब हमें पाकुड़ और महेशपुर की ओर कूच करना होगा।
0: चलो साथियों, चलो साथियों।
2: तो वहाँ भी हमारे संथाल विजयी रहे बाबा।
3: हाँ बिटिया, अंग्रेज उनके आगे टिक ही नहीं पाए।
2: अच्छा?
3: हाँ, उनसे बचने के लिए अंग्रेजों ने 24 घंटों में एक मार्टेला टावर खड़ा किया।
2: अच्छा।
3: जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां बना दी गईं और उसमें से उन्होंने गोलियां चलाई। वैसे यहाँ हार तो नहीं हुई, पर काफी साथियों के मारे जाने के कारण सिद्धू और कान्हू मुर्मू थोड़े कमजोर जरूर पड़ गए थे। ये बात होगी कोई 15 जुलाई 1855 की।
2: अच्छा।
3: सिद्धू अपनी बची खुची सेना लेकर बढ़ैत आ गया, जहां उसने नए सिरे से अपनी सेना का गठन किया।
2: अच्छा।
3: और जानते हो, यहाँ बाहरी लोगों या दिक्कू ने भी उसका साथ दिया।
2: अच्छा।
3: हाँ। पर अब किस्मत उसका साथ छोड़ रही थी।
4: क्यों बाबा?
3: क्योंकि बरसात होने पर जंगलों में युद्ध करना काफी मुश्किल था और संथाल सैनिक भी काफी मारे जा चुके थे।
5: चिंता मत कर सिद्धू, बड़े हाथ से गया तो क्या हुआ, हम फिर से जीत लेंगे।
1: कान्हू, कहीं हमारे साथी हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि अंग्रेजों ने एक महीने के अंदर अंदर दामिनी को संस्थाली क्षेत्र खाली करवा लिया है।
5: पर अभी तकरीबन 30,000 संथाली हैं, जो अपने बर्छे तीर कमान से लैस हैं, उन्हें दबाना आसान नहीं है। अंग्रेज सरकार बहुत चिंता में है।
1: तो फिर वो जरूर कोई चाल चलेगी, उनके पास धोखे के अलावा कुछ नहीं है, और देखना वो धोखे को अपना हथियार बनाएगी। फिर भाई सतर्क रहना।
2: सुबह सुबह अंग्रेजों ने गांव गांव में ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि अगर संथालों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया है, लूटपाट की है, लोगों के प्राण लिए हैं और सरकारी फौजों का सामना किया है, ये उनकी मूर्खता है। पर अगर वो इसे अपनी गलती समझकर वापस आना चाहते हैं और मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। पर इनके नेताओं को नहीं, जिन्होंने आम सीधे साधे संथालों को भड़काया और रण क्षेत्र में बिना सोचे समझे उतार दिया। ऐसे नेताओं की छानबीन करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो सरकार आपसे अनुरोध करती है कि आप लोग समर्पण कर दे। अगर इस घोषणा के बावजूद भी कोई खड़ा हुआ तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हाँ,
4: ये सब धोखा है, ये सब धोखा है, हम नहीं जाएंगे। हाँ। हम जानते हैं सब धोखा है।
1: अच्छी खबर लाई हो बहन जानो, तो साथियों तैयार हो जाएं। अंग्रेज सरकार को एक बार फिर मुंह की खिलाने का वक्त आ गया है।
5: वक्त आ गया है।
1: हमारे दो भाइयों चांद और भैरव का बदला भी अभी बाकी है, जो बहराइच में अंग्रेजों के लड़ते हुए शहीद हो गए।
5: करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
6: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: हमें मालूम है, हमें मालूम है कि अंग्रेजी सरकार हमारे खिलाफ हर तरह की ज्यादती करेगी, पर हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
2: यानी सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू इन अंग्रेजों से जीत गए?
3: गैरों से तो लड़के जीता जा सकता है, पर जो अपने होते हैं ना, उनसे कोई नहीं जीत सकता।
2: क्या मतलब बाबा?
3: मतलब ये बेटा कि सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों को तो नाकों चने चबवा दिए, उन्हें बता दिया कि तुम्हारी बंदूकें हमारे तीर कमानों और बर्छों का मुकाबला नहीं कर सकती। पर अपनों के बीच में किसी धोखेबाज को ढूंढ पाने के लिए आज तक ना तो कोई हथियार या औजार बना, ना कोई मशीन बनी कि दगाबाज का पता बता दे।

0: तू कर दी किसी अपने ने मुखबिरी।
1: अच्छा
0: अंग्रेजों के कलेजे को ठंडक पहुंची, क्योंकि वो जानते थे कि इन संथालों के राजा पर ईमानदारी से कब्जा तो नहीं पाया जा सकता। तो बेईमान लोगों ने बेईमान को ढूंढा और लालच देकर मिला लिया अपनी तरफ। और उसने संथालों के वीर जांबाजों की खबर दे दी। अंग्रेजों ने अपनी दोगली बहादुरी दिखाई और उनके ही गांव भोगनाडीह में बीच चौराहे पर पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी।
2: नहीं, नहीं, नहीं, पर नमन है ऐसे ऐसे मुर्मू भाइयों को। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। कितनी हिम्मत और गर्व देती है ये स्वतंत्रता सेनानियों की बातें, है ना बाबा?
0: चांद, हिम्मत है तो अपनी जमीन पर जिसका कब्जा हुआ है उसे कह जाकर।
1: होल होल संथाल,
3: होल होल संथाल,
1: होल होल संथाल,
3: होल होल संथाल।
1: बाबा, अब तो हम चुप नहीं रहेंगे, गलत बात पर आवाज उठाएंगे।
0: हाँ, उस इंसान को बताना होगा कि वो गलत कागज बनाकर हमारी चीज अपनी नहीं कर सकता। अब हम आजाद हैं, अंग्रेजों का अत्याचारी कानून नहीं है जो गलत को भी सही ठहराए।
1: बिल्कुल ठीक।
0: हमारे आजाद देश का कानून है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है।
3: हुलहुल संथाल, हुलहुल संथाल। हाँ बाबा, अब उसको जाकर पहले समझाऊंगा और नहीं माना तो फिर कानून का सहारा लेकर अपनी जमीन वापस लूंगा।
0: शाबाश।
1: बिल्कुल ठीक। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारी जमीन और उस पर हुए नुकसान का हर्जाना नहीं मिल जाता। हारेंगे नहीं, हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे।
0: शाबाश मेरे बच्चों।
3: जय जोहार बाबा।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक हुल हुल संथाल। ये नाटक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू और कान्हू मुर्मू पर आधारित था। लेखक योगेश अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे ब्रिजमोहन यादव, राजेश कंबोज, अन्नु शर्मा, प्रवीण कुमार भारती, अपूर्व गुप्ता, मोहम्मद बुरहान और अमर साहा।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।

杨佳米十七直升机加悬挂万德马特拉姆旗帜，另一架悬挂三次国旗，在停机券商下滑板。

0: 将杜黎日成为一个全国型的节日，他向数百万渴望自由的人民致敬，并向国家的自由斗士们表达了敬意。他向全体公民致意问候，包括农民、军人、安保人员、妇女、专业人士、科学家、教育工作者、
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज

0: हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: 总理指出，在过去的12年里。 全国数亿公民凭借尽力的决心和无穷的奉献精神，竭尽全力尽全力长国家推向新的高度。他说：“正是由于这些努力，2.5亿人摆脱了贫困。”他指出，印度曾被列为脆弱无国之一，如今已。
0: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़
1: 总理莫迪表示，自2014年以来，印度已与近40个国家签署了自由贸易协定，为印度企业和出口商创造了巨大的机遇。他呼吁各国的微型、小型和中型企业充分利用这些机遇。 确保印度产品进入全球市场。总理补充道：“印度纺织品、制鞋和药品在全球市场具有巨大潜力，但他强调，印度产品必须达到并超越国际标准，才能在全球市场取得成功。”他补充道：“如今。” 每一位印度人都秉持着印度制造和支持本持的精神。他表示，印度不能继续依赖其他国家，必须实现自力更生的状态。
0: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
1: 总理反复说，一个国家并非因缺乏资源停止，而是受限于思维定势。他说，如今印度不得不依赖原有。 这也正是思维定势所致。他表示，政府已开放了增配化为金采区的99%，并将这些区域转变为了开采区。他表示，政府目前正在机制开展海底勘探。
0: मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर

0: के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया।
1: 总理莫迪表示，能源安全是当前的一项重要需求。政府已成为此采取了重大举措。他说，核能是确保国家能源安全的重要途径。政府的目标是在2047年前将核电将其容量提升至100吉瓦。 印度已设定目标，将在本十年内投运5座新的核反应堆。总理莫迪还强调了，今年在快种子、增值反应堆技术方面取得重要里程碑。他表示，这是事先国家核能自给自足的重要一步。
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: 总理莫迪表示，政府将在未来的一年内为1000 万青年提供人工智能技能培训，这将使他们能够在全球人工智能领域发挥引领作用。总理莫迪表示，国家必须关注3方面：成本、质量和技能。
0: मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य।
1: 总理在讲话中呼吁全国人民发挥其他动力的作用。他表示，在未来5到 7年内，国家将实现过去5到7十年间未能实现的目标。凭借其他动力的力量与潜力，政府将带领国家方向新的高度，并无需其超越新目标的能力。总理莫迪补充道，将充分挖掘青年群体的巨大潜力，以 建设一个更强大、更发达的印度。总理莫迪概述的第一个动力源是制造业。这七大动力源的第二大动力的是农业和粮食生产。第三个是科技与创新。第四个是国家总体规划。第五个是国防能力。 第六个是绿色经济和蓝色经济。第七个动力源是印度的软实力。
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े

0: 德里广播电台这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
3: नमस्कार
2: अमीषा, सबसे पहले हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आज लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खेलों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल की बात की है और वो है टैलेंट हंट। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से कि हम उन सभी खेलों में पार्टिसिपेट करें, प्रधानमंत्री जी ने आज एक विशेष उद्घोषणा की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
4: दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में, और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट

0: का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे और कहीं ना कहीं देश के लिए कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। खास तौर से हम बात कर रहे हैं हॉकी की और हॉकी में लगातार पिछले दो ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम पदक जीतती आ रही है। और अमीषा, अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप में भी सकारात्मक शुरुआत भारतीय टीम की तरफ से हो चुकी है। वेल्स के साथ खेलते हुए भारतीय टीम अभी जो थर्ड क्वार्टर चल रहा है उसमें भारतीय टीम 2-0 से आगे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम ने लगातार अपने पास गेंद रखी है और जिस तरह से भारतीय टीम ने अभी तक जितने भी अटैक्स बनाए और जो मूव्स बनाए उसका भारत को फायदा भी मिला। और 10वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने और उससे पहले सुमित ने 2 गोल भारतीय टीम कर चुकी है और दोनों ही गोल फर्स्ट क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने किए हैं। दूसरे क्वार्टर में हालांकि वेल्स ने अच्छी हॉकी खेली लेकिन कहीं ना कहीं एक जिसे हम कहते हैं डोमिनेंस भारतीय टीम ने बनाया हुआ है और ये एक बहुत अच्छी बात है। और वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत कर दी है तो हमेशा कहीं ना कहीं ये तो लग ही रहा है कि भारतीय टीम पूरी लय में है।
2: जी बिल्कुल। और अब हम जैसे अभी तो मैच जो है वह लाइव चल रहा है, लेकिन हम बाकी भी जो मेंस टीम के मैच होंगे उस पर ही नज़र डालेंगे। तो आइए नज़र डालते हैं जर्मनी वर्सेस मलेशिया के आने वाले मैच पर। गत चैंपियन और दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी का मुकाबला एशिया की तेज तर्रार टीम मलेशिया से होने जा रहा है। दोनों टीमों का यह पहला ग्रुप मैच भारतीय समय अनुसार शाम ठीक 6 बजे शुरू होगा। अगर हम इतिहास और आंकड़ों की बात करें तो इस मुकाबले में जर्मनी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जर्मनी की टीम ने 3 बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है और वह इस बार डिफेंडिंग चैंपियन यानी मौजूदा विजेता के रूप में मैदान पर उतर रहे हैं। कोच आंद्रे हेनिंग ने इस बार भी अपनी टीम में उन 9 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है जिन्होंने भारत के ओडिशा में हुए पिछले विश्व कप में बेल्जियम को हराकर ट्रॉफी उठाई थी। दूसरी तरफ मलेशिया की टीम, जिसे हॉकी की दुनिया में स्पीड टाइगर्स कहा जाता है, वह विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। मलेशिया ने अब तक एक बार भी विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व कप के मंच पर इन दोनों टीमों की भिड़ंत आखिरी बार साल 2018 में हुई थी, जहां जर्मनी ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मलेशिया को 5-3 से मात दी थी। जर्मनी के कप्तान टॉम ग्राम्बुश की अगुवाई में इस टीम की सबसे बड़ी ताकत इसका सधा हुआ यूरोपीय डिफेंस और खतरनाक ड्रैक फ्लिकर्स है। क्रिस्टोफर रोर और जस्टिस वेगांट जैसे अनुभवी फॉरवर्ड्स किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने का दम रखते हैं। वहीं मलेशिया के लिए आज का मुकाबला बहुत बड़ी परीक्षा है। मलेशिया के कोच जानते हैं कि अगर उन्हें पूल बी में जीवित रहना है तो जर्मनी के खिलाफ शुरुआती मिनटों में गोल खाने से बचना होगा। मलेशिया का काउंटर अटैक यानी तेजी से हमला करने की रणनीति आज जर्मनी के मजबूत डिफेंस को कितनी चुनौती दे पाती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।
1: और देखना दिलचस्प यह भी होगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है वो कैसा रहेगा। भारत के साथ ही इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें भी ग्रुप डी में ही हैं, तो यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि ये दोनों टीमें कैसा खेलेंगी।
2: आज भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे नीदरलैंड्स में विश्व की 3रे नंबर की मजबूत टीम इंग्लैंड का सामना 4 बार की पूर्व चैंपियन पाकिस्तान से होने जा रहा है। खेल के इस मंच पर दोनों टीमों के लिए विश्व कप की शुरुआत करने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। जब बात इंग्लैंड और पाकिस्तान की होती है तो हॉकी के मैदान पर इतिहास खुद दोहराता है। आंकड़ों की माने तो पुरुष हॉकी विश्व कप के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक कुल 8 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता में पलड़ा इंग्लैंड का भारी रहा है, जिसने 4 मैचों में बाजी मारी है। वहीं पाकिस्तान की टीम केवल 2 बार ही इंग्लैंड को शिकस्त दे पाई है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है, जिन्होंने 4 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि हाल के वर्ष में रैंकिंग के मामले में बड़ा अंतर आया है। जहां इंग्लैंड दुनिया में नंबर 3 पर काबिज है, वहीं पाकिस्तान 12वें स्थान पर खिसक चुका है। अगर हम दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम बेहद खतरनाक नजर आ रही है। हाल ही में खेली गई प्रो लीग के दौरान इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 7-0 से एक तरफा मैच में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा हालिया विश्व कप क्वालिफायर्स के फाइनल में भी

0: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपना दबदबा साबित किया था। ऐसे में आज पाकिस्तान के ग्रीन शर्ट्स के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि अपनी साख बचाने और पुरानी हार का हिसाब चुकता करने का सबसे सुनहरा मौका है। पाकिस्तान की मजबूत अटैक लाइन और इंग्लैंड की सदी हुई यूरोपीय डिफेंस के बीच यह टक्कर आज रात एम्स्टर्डम के मैदान पर अपना दमखम दिखाने वाली है। पूल डी का यह मुकाबला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसी ग्रुप में भारत और वेल्स जैसी टीमें भी मौजूद हैं। इस साल 2026 के नए नियमों के तहत हर एक गोल और हर एक अंक मायने रखता है। ऐसे में टूर्नामेंट के पहले ही मैच में जीत दर्ज करना दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है।
1: और वहीं दूसरी ओर महिलाओं के वर्ग में जर्मनी और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने थी और जर्मनी ने फुल टाइम में पूल बी का यह मुकाबला था, जर्मनी ने 3-0 से स्कॉटलैंड को हराकर अपना यह मुकाबला जीत लिया है। और वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जापान की महिलाओं की टीमें आमने सामने थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पूल ए के इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। 2-0 से उन्होंने जापान को हराया है और सबसे अहम मुकाबला होना है कल, जहां पर भारत और चाइना की टीमें आमने सामने होंगी। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, आइए सुनते हैं।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम कल से नीदरलैंड्स में अपने हॉकी विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करने जा रही है। एम्स्टर्डम के ऐतिहासिक वैगनर हॉकी स्टेडियम में पूल डी के अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम का सामना दुनिया की दूसरे नंबर की मजबूत टीम चीन से होगा। खेल प्रेमियों की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं, जो भारतीय समय अनुसार शाम ठीक 4:30 पर शुरू होगा। भारत और चीन की यह टक्कर केवल एक मैच नहीं बल्कि विश्व कप के मैदान पर पुरानी प्रतिद्वंदिता की एक नई किश्त है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछली बार ये दोनों टीमें साल 2022 के विश्व कप में इसी मैदान पर आमने सामने आई थी। वह मैच बेहद ही रोमांचक रहा था और भारत के अनुभवी खिलाड़ी वंदना कटारिया के शानदार गोल की बदौलत 1-1 पर रहा था। भारतीय महिला हॉकी टीम इस बार एक 52 साल पुराने सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतर रही है। विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 1974 के पहले टूर्नामेंट में रहा था, जब कप्तान अजीत कौर की अगुवाई में टीम चौथे स्थान पर रही थी। तब से अब तक भारत को अपनी पहली विश्व कप मेडल की तलाश है। कल कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में हमारी टीम इस इतिहास को बदलने की शुरुआत करेगी। भले ही रैंकिंग में चीन की टीम दुनिया में नंबर 2 पर हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त इस समय भारत के पास है। अभी कुछ ही दिन पहले राजगीर में खेले गए विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। उस मैच में स्टार फॉरवर्ड दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। हालांकि चीनी टीम इस हार का बदला लेने के लिए बेहद बेताब होगी। पिछले साल 2025 में एशिया कप फाइनल में चीन ने भारत को 4-1 से हराकर मैच अपने नाम किया था। इसलिए कल का यह मुकाबला रणनीतियों की एक बड़ी जंग होने वाला है, जहां एक तरफ चीन के खतरनाक ड्रैगन फ्लिकर्स होंगे तो दूसरी तरफ भारत की अभेद्य डिफेंस दीवार। इस बार चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। FIH के साल 2026 के नए नियमों के मुताबिक इस बार सीधे क्वार्टर फाइनल्स मैच नहीं खेले जाएंगे। टीमों को एक बेहद कठिन क्रॉसओवर राउंड से गुजरना होगा। पूल डी में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें भी शामिल हैं। ऐसे में हर एक गोल और हर एक अंक टीम के सफर को तय करेगा। इस लिहाज से कल के मैच में एक मजबूत शुरुआत बेहद जरूरी है। क्या हमारी भारतीय टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अपने जादू को यूरोप की धरती पर दोबारा दोहरा पाएगी या फिर दुनिया की नंबर 2 टीम चीन अपना दबदबा बनाएगी?
1: ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या भारतीय महिला हॉकी टीम अपना अच्छा प्रदर्शन दोहरा पाएगी, और निश्चित तौर पर दोहराएंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जो भारतीय महिला हॉकी टीम खेल रही है वो बहुत अच्छी हॉकी खेल रही है। और अच्छी बात यह है कि एक समय था जब हमारी बात होती थी कि फिटनेस की और हम थोड़े से दौड़ने में उतने अच्छे नहीं थे, उतनी अच्छी दौड़ नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। स्किल, फिटनेस, एंड्योरेंस, हर चीज अब भारतीय महिला हॉकी टीम की बहुत ही शानदार है। और अमीषा, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भारतीय महिला टीम विश्व कप में पदक भी जीते क्योंकि बहुत अच्छी लय में है। और वहीं बहुत अच्छी लय में है भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय पुरुषों की क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी लय में है और इस समय श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम है और पहला टेस्ट मैच चल रहा है। हालांकि वर्षा बाधित ये मुकाबला है और पहले दिन ही वर्षा ने अपना काफी एक तरह से कहें तो प्रभाव दिखाया है इस मुकाबले

0: में, और क्या क्या इस मुकाबले में हो सकता है, इस पर हमने बात की जाने माने क्रिकेट कोच रमेश चोपड़ा से, और साथ ही हमने उनसे ये भी पूछा कि जिस तरह से दिल्ली में DPL के मुकाबले हो रहे हैं या अन्य लीग्स होती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं खिलाड़ियों के लिए। तो हमारे प्रश्नों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: देखिए, वैसे तो आज का दिन बहुत बड़ा है भारत के लिए, स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन पे जो स्वतंत्र होके जो भी डिसीजन लिया होगा कैप्टन ने, वो अच्छा ही साबित हो सकता है। और मेरे ख्याल में जो स्कोर कार्ड चल रहा है अभी तक, उसके हिसाब से बैटिंग करने का जो डिसीजन लिया है इन्होंने पहले, वो ठीक लगता है। टीम की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जिसमें स्पिनर डोमिनेटेड साइड है। आपके पास तीन रेगुलर स्पिनर खेल रहे हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि डिसीजन ठीक है, और जिस हिसाब से श्रीलंका की पिचेस बिहेव करती हैं, खास करके चौथे और पांचवें दिन, तो ये और अच्छा डिसीजन लगता है।
0: जब वर्षा बाधित मुकाबले होते हैं और कई बार क्रैम्प की एक बहुत भयंकर समस्या हो जाती है, तो क्रैम्प से जिस तरह से KL राहुल आज रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, तो किस तरह से जूझा जाए, किस तरह से वो वापस रिकवरी कर सकते हैं?
1: देखिए, वैसे तो ये जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इनके पास इतनी सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिलती हैं, जो बच्चे खेलने जाते हैं, इनके साथ पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है वो पूरा होता है। उसमें आपका ट्रेनर होगा, उसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट होगा, और फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब ये बच्चों के कैंप लगते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन से पहले, इनके फिटनेस टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हैं, जिसमें एक आम आदमी के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत मुश्किल होता है, पास करना दूर की बात है। और फिर भी इनको श्रीलंका में जाके क्रैम्प्स हुए हैं और ह्यूमिड एरिया है, वो बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ऐसे मौके पे पूरा सागर लिक्विड का ज्यादा ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। पर फिर भी इनको रिकवरी मिल जाएगी, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट साथ साथ में चल रहा होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम की इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही होगी, वैसा कुछ ना कुछ इनको दे रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि KL राहुल बैटिंग करेंगे अगर मौका लगा तो।
0: अभी तक की जो सूरत हाल है इस मुकाबले में वो ये है कि

0: kama soko ya kimataifa. Hata hivyo alisisitiza kwamba bidhaa za India lazima zikidhi na kuzidi viwango wa kimataifa ili kufanikiwa kimataifa. Aliongeza kuwa leo kila mahindi anakumbatia roho ya ke India na Vocal for Local. Alisema India haiwezi kubaki kutegemea mataifa mengine na lazima ilitegemea.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है. ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है. मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है. दुनिया में हमें पहुंचना है. भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है.
0: Waziri Mkuu wa India Bwana Modi alisema kwamba mara nyingine nchi haiachi kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali bali huacha kwa sababu ya mapungufu ya mawazo yake. Alisema leo India inapaswa kutegemea mafuta ghafla na hii pia matokeo ya mapungufu ya mawazo. Alisema serikali imefungua 99% na maeneo ya pawani ambayo hapo awali yaliteuliwa kama maeneo yasiyoruhusiwa kuyabadilisha kwa maeneo ya ruhusa. Alisema serikali sasa inafuatilia kikamilifu uchungufu chini ya bahari na kufanya juhudi za kupungua akiba mpya.
1: Mere pyare deshwasiyo, kai bar sansadhanon ki kami ke karan desh rukta nahi hai, lekin rukne ka karan सोच की सीमाएं होती है. जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं. देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है. आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा. हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था. ये सोच का दारिद्र्य था. हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता. हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में
0: Waziri Mkuu wa India Bwana Modi alisema usalama wa nishati hitaji kubwa leo na serikali imechukua hatua muhimu kuelekea hilo. Alisema nishati nyuklia ni azia muhimu ya kuhakikisha usalama wa nishati wa nchi. Serikali imelenga kufikia kikawati 100 za uwezo wa nguvu za nyuklia ifikapo mwaka 2027. India imeweka lengo la kuagiza mitambo mitano mipira ya nyuklia wakati wa muongo huu. Waziri Mkuu pia aliangazia hatua kubwa iliyofikiwa mwaka huu katika teknolojia ya fast Baridar. Alisema hii ni hatua muhimu kuelekea kuifanya nchi kutegemea katika nishati ya nuklia.
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी. एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं. एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
0: Waziri Mkuu wa India Bwana Modi alisema serikali inatoa mafunzo ya ujuzi wa akili bandia kwa vijana milioni 1 katika mwaka ujao. Hii itawawezesha kuongeza katika sekta ya akili bandia duniani. Bwana Modi alisema nchi lazima izingatie mambo matatu: gharama, ubora na ujuzi.
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य.
0: katika

0: hotuba yake wazi mkuu alihimiza taifa kutumia mikondo saba ya nguvu au sapta dhara. Alisema kwamba katika miaka mitano hadi saba ijayo nchi inafikia kile ambacho haikuweza kufikia katika miongo mitano hadi saba iliyopita kwa nguvu na uwezo wa sapta dhana. Serikali itapelekea taifa kwenye viwango vipya wa kuliwezesha kuvuka malengo mapya. Bwana Modi aliongeza kuwa uwezo mkubwa wa wizana utatumika kikamilifu kuzenga India yenye nguvu na maendeleo zaidi. Mkonde wa kwanza ambao waziri mkuu alielezea ni utengenezaji ya nguvu ya pili ya sapta dhara. Hii ni kilimo na uzalishaji wa chakula. Ya tatu ni teknolojia na ubunifu. Ya nne ni gati shakti. Ya tano ni uwezo wa ulinzi. Ya sita ni uchumi wa kizana na uchumi wa bluu. Mkonde wa saba wa sapta dhara ni nguvu laini ya India.
1: Main aaj us yug ko bhi yaad karna chahunga jab desh भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूँ, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा।
0: Waziri Mkuu alihitimisha hotuba yake katika ngome nyekundu kwenye kuimba Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram.
1: मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों। आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: Na huu ndio mwisho wa kipindi maalum ripoti ya redio kuhusu sikukuu ya uhuru wa India.

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम जी। राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: गांव लुगेश्वर से पप्पू राम घाट बोलो सर जी।
0: पप्पू जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ऋषिपाल जी को और मनसा राम चौहान जी को सुना दिए जी। कुछ दोस्त हैं जी, हरासी से राजकुमार डूडी जी है, दुर्गा कलोनी हांसी से राजू मिगलानी है, सुभाष योगी है हांसी से, और रोहतक से हमारे बहुत महावीर शर्मा जी हैं और जगजीवन शर्मा जी हैं करकावाड़ी गाँव।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई नमस्कार। पूरे भारत वर्ष को 15 अगस्त की शुभकामनाएं और आकाशवाणी परिवार को भी।
0: आपको भी स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं राजेंद्र जाटव हूँ, आबिपुर मान की पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी।
0: राजेंद्र जी, इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रिय कलाकार है मनसाराम और ऋषिपाल चौहान।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है
0: जी,
2: मुरादनगर से नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, शिवानी जाटव, प्रशांत जाटव और एक दरोगा साहब है निशांत जाटव, और कुछ आबिदपुर गांव से नाम महेंद्र, शारदा, राम किशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम, और ये पूरे आबिदपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं राम निवास अग्रवाल बोल रहा हूँ, भिवानी हरियाणा से।
0: राम निवास जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बड़े ही दिनों बाद फोन किया है आज तो।
3: हाँ शशि भाई, आज काफी दिन के बाद फोन किया है।
0: तो सबसे पहले तो आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद जी, आपको भी और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भी स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: तो इस मौके पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: इस मौके पर ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान की आवाज में सुनना चाहता हूँ जी।
0: बिल्कुल, उनकी आवाज में एक देशभक्ति रागनी आपको सुनवाएंगे।
3: कुछ दोस्त हैं हनवर बिहारी जी और सैनी साहब हैं, और
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, सखी भाई को राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: योगेंद्र बोल रहा हूँ जी, गांव निमचाना, जिला बुलंदशहर।
0: योगेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है और आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: मेरी तरफ से भी सभी देशवासियों को, पूरी आकाशवाणी टीम को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और बताइए, इस अवसर पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज ऋषिपाल चौहान व मनसाराम चौहान की कोई देशभक्ति की रागनिया और कोई

0: रागनी सुनवा दें जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: राम राम जी।
1: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल चौहान और मनशा राम चौहान से ये देशभक्ति रागनी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346 3 1, और दूसरा नंबर है 0111

0: 3-3-2, इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: पटनाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नालसा, न्याय सबके लिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, BRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपथ तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं अमित।
4: और मैं हूं नीरा। हमारे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश आजादी के रंग में सराबोर है। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हमने अभाव से अपार तक की यात्रा तय।
4: बिल्कुल। और आज का दिन हमें उस इतिहास की याद दिलाता है जिसने हमें अपने देश में स्वतंत्र होकर सांस लेने का अधिकार दिया। ये वो देश है जिसकी मिट्टी में शहीदों के बलिदान की खुशबू है। इस देश के तिरंगे में 3 रंग हमें साहस, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं।
3: बिल्कुल नीरा, जब बात समृद्धि की आती है तो इस देश के बेटों ने अनुसंधान किया, विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम गढ़े और हम वैश्विक पंक्ति में अग्रणी हो गए।
4: बिल्कुल। आज के इस पावन बेला पर समय है उन सभी को नमन करने का।
3: बिल्कुल नीरा, उन देश के सच्चे सपूतों को जिन्होंने भारत माता की बलिबेदी पर अपने प्राण नौछावर कर दिए, हम सत सत नमन करते हैं। मित्रों, बात करें यदि हम कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र में देश के वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर जो आयाम गढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमें याद दिलाते हैं कि हम उन्नति के पथ पर किस रफ्तार

0: देश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई, इसी को लेके आपको एक जानकारी दिलवाते हैं। स्वतंत्र भारत में कृषि, विकास और किसान, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जगदीप सक्सेना। आप परियोजना निदेशक रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में।
1: तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: आज पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ हर्ष, उल्लास और गर्व के साथ मना रहा है। स्वतंत्र भारत की गौरवशाली सफलता गाथाओं में देश के अद्भुत कृषि विकास का अग्रणी स्थान है। इस दौरान हमने अभाव से अपार तक की यात्रा तय करके वैश्विक कीर्तिमान बनाया है। निरंतर बढ़ती आबादी और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच भारत ने एक सतत और सशक्त खाद्य सुरक्षा हासिल की है। अन्नदासता की बेड़ियां तोड़कर हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति तक और नीली क्रांति से सुनहरी क्रांति तक भारतीय कृषि ने कामयाबी के परचम लहराए हैं। विज्ञान के अनुप्रयोग ने फसलों की नई और मनचाही खूबियों वाली किस्मों की अनेक श्रृंखलाओं का विकास किया है। पशुओं के आनुवंशिक नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों में भी कामयाबी मिली है। कृषि को सतत बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु अनुकूलता को अपनाया गया है। प्राकृतिक और जैविक खेती, सटीक खेती, क्लाइमेट स्मार्ट खेती और डिजिटल खेती ने भारतीय कृषि में आधुनिक आयाम जोड़े हैं। जय जवान जय किसान के प्रसिद्ध उद्घोष में जय विज्ञान और जय अनुसंधान का समावेश भी हुआ है। आज देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार का एक मजबूत और व्यापक ढांचा मौजूद है। इससे आधुनिक कृषि विकास को निरंतर गति और संबल प्राप्त हो रहा है। अतीत में झांकें तो देश को आज़ादी भूख और अकाल की काली छाया में मिली थी। देश के अनेक भाग भुखमरी से त्रस्त थे। स्वतंत्र भारत की वैश्विक छवि कलंकित हो रही थी। इस विकट परिस्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी प्राथमिकता तय करते हुए कहा, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं। वर्ष 1929 में स्थापित और उपेक्षित पड़ी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR को देश की शीर्षस्थ कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। आज ICR के अंतर्गत देश भर में 113 अनुसंधान संस्थान, 74 कृषि विश्वविद्यालय और 731 कृषि विज्ञान केंद्र तत्परता से कार्य कर रहे हैं। ICR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और प्रसार तंत्र के प्रभाव से वर्ष 1950-51 के मुकाबले 2021-22 तक खाद्यान्न उत्पादन में 6.21 गुना, बागवानी उत्पादन में 11.53 गुना, दूध उत्पादन में 13.01 गुना, मछली उत्पादन में 31.61 गुना और अंडा उत्पादन में 70.74 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच देश की आबादी में लगभग 3.9 गुना बढ़ोतरी हुई, परंतु खाद्य सुरक्षा सतत बनी रही। वर्तमान में भारतीय कृषि दुनिया की लगभग 18% आबादी का सफलतापूर्वक और सम्मान के साथ भरण पोषण कर रही है, जबकि हमारे पास दुनिया की केवल 2.4% भूमि और लगभग 4% मीठे जल के संसाधन हैं। सतत और सशक्त खाद्य सुरक्षा के कारण देश के सुरक्षित अन्न भंडारों में निर्धारित मानदंडों से अधिक अन्न उपलब्ध है। देश न केवल 81 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन वितरित करने में समर्थ है, बल्कि युद्ध और आपदा के समय जरूरतमंद देशों को अन्नदान भी करता है। आज आत्मनिर्भर भारत के दौर में ये कल्पना करना कठिन है कि 1950 और 1960 के दशक में भारत अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज था। अमेरिका की मनमानी शर्तों पर उसका लाल घटिया गेहूं स्वीकार करना पड़ता था। देश को अन्नदासता के इस विकट दौर से उबारने के लिए एक बहुमुखी रणनीति बनाई गई, जिसमें विज्ञान का सबसे अहम किरदार था। इसकी बागडोर प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सौंपी गई। मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक को इस विशेष अभियान में मेंटर के रूप में आमंत्रित किया गया। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक आसपास के क्षेत्रों में गेहूं की मैक्सिकन बोनी किस्में लहलहाने लगीं। सरकार ने गेहूं की खेती करने वाले किसानों को पर्याप्त उर्वरक और सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की। परिणाम आशाजनक और आश्चर्यचकित करने वाले थे। वर्ष 1966 के 11 मिलियन टन के मुकाबले 1968 में देश में गेहूं का कुल उत्पादन

17 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इतने कम समय में गेहूं के उत्पादन में इतना उछाल दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं देखा गया था। विश्व इस क्रीट मार्ग में चमत्कार था, जबकि भारत में ये अन्नदास्ता का अंत और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के युग का सूत्रपात था। यूएस एड संस्था के डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति का नाम देकर विश्व प्रसिद्ध कर दिया। बाद में यही कामयाबी चावल में भी दोहराई गई। फसलों की उन्नत किस्मों, खेती की सुधरी विधियों, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार और कृषि हितैषी सरकारी नीतियों के कारण वर्ष 2025-26 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 376.56 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित HD श्रृंखला और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित DVW श्रृंखला की किस्मों का योगदान अग्रणी रहा है। कुछ किस्मों में बेहतर पोषण के लिए अधिक आयरन, अधिक प्रोटीन, अधिक जिंक जैसे गुणों का समावेश किया गया है। इसी तरह चावल की अधिक पोषण मान वाली अनेक बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई हैं। क्लाइमेट स्मार्ट खेती के लिए सूखा और जल अभाव सहने वाली, बाढ़ और जल डुबाव सहने वाली, लवणीयता सहने वाली और ऊंचे तापमान में भी अच्छी उपज देने वाली किस्में तैयार की गई हैं। हाल में ICR ने चावल की दुनिया की पहली जीनोम एडिटेड किस्में विकसित करके वैश्विक कीर्तिमान बनाया गया है। ये किस्में अधिक उपजशील होने के साथ कम अवधि में परिपक्व हो जाती हैं और इनके दाने तथा पकाने की गुणवत्ता बेहतर होती है। हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में सबसे परिवर्तनकारी अध्याय बासमती चावल की सफलता की कहानी है। वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक बासमती चावल के निर्यात का मूल्य लगभग 51.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है और इसमें पूसा बासमती श्रृंखला के चावल की हिस्सेदारी लगभग 90% है, जो एक कीर्तिमान है। स्वतंत्र भारत के समक्ष भूख के साथ व्यापक कुपोषण भी एक बड़ी चुनौती थी। वर्ष 1950-51 में देश में कुल दूध उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन था और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता मात्र 124 से 130 ग्राम थी। दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इसकी कमान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंपी गई। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दूध की संग्रह वितरण प्रणाली को सशक्त तथा प्रभावी बनाया। के लिए गांव-गांव में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया और इन्हें एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड से जोड़ दिया। दूसरी ओर प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक नस्ल सुधार, पोषण स्तर में सुधार और पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के वैज्ञानिक प्रयास किए गए। पशुओं को संतुलित आहार और वर्ष भर हरा चारा मिलने की व्यवस्था की गई। चारे को संरक्षित करने के लिए साइलेज बनाने की तकनीक विकसित कर डेयरी किसानों तक पहुंचाई गई। पशुओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए किए गए प्रयासों ने भारत को रिंडरपेस्ट यानी पशुओं के प्लेग जैसे घातक रोग से मुक्त कर दिया। आज खुरपका मुंहका रोग और ब्रुसेलोसिस सहित अनेक गंभीर रोगों के देशी टीके उपलब्ध हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भारत ने वर्ष 2024-25 में 248 मिलियन टन दूध उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, जो कुल वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 25% है। इससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दूध उपलब्धता 485 ग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है और यह वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। दूध के साथ दालें भी देश की पोषण सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में 12 से अधिक प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जिनसे 2024-25 में 25.68 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ। इस तरह भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है और वैश्विक दाल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। परंतु इसके साथ ही हमारे देश में दालों की खपत भी सबसे ज्यादा होती है। देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 11,440 करोड़ रुपए की लागत से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लागू किया है। इसका लक्ष्य दालों की खेती को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करके उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में लगभग दालों जैसी चुनौती खाद्य तेलों यानी तिलहन के उत्पादन और उपलब्धता में भी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 43 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत की गिनती विश्व के अग्रणी

तिलहन उत्पादक देशों में की जाती है, परंतु खाद्य तेलों की निरंतर बढ़ती खपत के कारण हमें खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने लोगों से खाद्य तेलों की खपत में 10% कटौती करने का आह्वान किया है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार द्वारा दो राष्ट्रीय मिशन लागू किए जा रहे हैं, एक विशिष्ट रूप से तेल ताड़ पर और दूसरा सामूहिक रूप से सभी तेलहनों पर। इन दोनों ही मिशन में उन्नत किस्मों, सुधरी कृषि विधियों और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों व मशीनरी के माध्यम से विज्ञान तथा नवाचार का समावेश किया गया है। तिलहनों का राष्ट्रीय मिशन 2024-25 से 2030-31 तक की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 2030-31 तक तिलहनों के क्षेत्र को बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर तक और तिलहन उत्पादन को 69.7 बिलियन टन तक पहुंचाना है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद भारत में एक अन्य और लगभग उतनी महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसका आगाज 1990 के दशक में हुआ। सुनहरी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध यह प्रसंग देश में बागवानी उत्पादन में आए मजबूत उछाल को प्रदर्शित करता है। इसमें फलों और सब्जियों के साथ मसाले, औषधीय व सुगंधीय पौधे, बागानी फसलों, फूलों और शहद जैसी अन्य जिन्सों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें 114.51 मिलियन टन फल और 219.67 मिलियन टन सब्जियां और 33.54 मिलियन टन अन्य बागवानी उत्पाद शामिल हैं। देश के ताल तलैयों, नदियों, झीलों और सागरों में मछलियों तथा अन्य जल जीवों के उत्पादन में साधारण प्रगति हुई है, जिसे नीली क्रांति का नाम दिया गया है। वर्ष 2015 में नीली क्रांति के नाम से ही भारत सरकार की एक मात्स्यिकी विकास योजना शुरू की गई थी, जिसमें इस सेक्टर के सभी पहलुओं को समर्थित और संबोधित किया गया था। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में कुल मात्स्यिकी उत्पादन 197.75 लाख टन दर्ज किया गया, जो वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन के दुगने से अधिक है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान करता है। शीत जल मात्स्यिकी, खारे पानी में मछली पालन और समुद्री झींगा पालन की नई विधियों ने मछली उत्पादन में वृद्धि की है। मछलियों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले अनेक पोषक आहार विकसित कर उपलब्ध कराए गए हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आधुनिकीकरण करने से ऊर्जा कुशलता और प्रग्रहण क्षमता में सुधार के साथ मछुआरों की जीवन सुरक्षा भी बढ़ गई है। मछलियों में रोग नियंत्रण और चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। पेन कल्चर नामक नई तकनीक का उपयोग करके नम भूमियों और बीस में मछली उत्पादन को लगभग 10 गुना तक बढ़ाने में सफलता मिली है। कृषि विकास के इन सभी आयामों में भारत सरकार की अनेक योजनाओं ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन पूरे देश में नई कृषि क्रांति का आह्वान कर रहा है। इसी तरह समेकित बागवानी विकास मिशन ने सुनहरी क्रांति को बल दिया है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रसार के लिए भी विशेष योजनाएं सक्रिय हैं। डिजिटल खेती के प्रसार के अंतर्गत ड्रोन्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशु सुधार के अंतर्गत AI को किसानों के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है और रोग नियंत्रण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को समृद्धि के स्तर पर आगे बढ़ाया है। कृषि अनुसंधान और नवाचार में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेश ने भारतीय कृषि के विकास को सतत, सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। सूखा, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से भूख और काल की संभावना अब शून्य हो गई है। देश के हर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कृषि आपदा योजनाएं तैयार हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों, किसानों और प्रशासन के आपसी सहयोग से लागू कर दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए भी भारतीय कृषि तैयार है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती विचार के स्तर से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। खेती में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखना एक सतत और अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे कुशल प्रौद्योगिकी के विकास से पूरा किया जा रहा है। अनाज और अन्य खाद्य उत्पादों का भंडारण अब उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा रहा है, इससे भंडारण अवधि में सार्थक वृद्धि हुई है। देश में कृषि और खाद्य सुरक्षा संबंधी विकास अब खेत खलिहानों और नदियों तालाबों से आगे निकलकर प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, वितरण और बाजारों तक पहुंच गया है। भारतीय कृषि अब सदाबहार क्रांति के दौर से गुजर रही है
और देश

0: आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
1: मित्रों, अभी हम जानकारी ले रहे थे स्वतंत्र भारत में कृषि विकास और किसान। डॉक्टर जगदीप सक्सेना, जो परियोजना निदेशक रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। जानकारी के साथ साथ जब कृषि के विकास को हम देखते हैं तो लगता है कि आज हम एक सकारात्मक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, और स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में आए लगातार बदलाव, नई तकनीकों, बदलती कृषि व्यवस्था की बात करें तो भी किसानों ने हमेशा मजबूती से चुनौतियों का सामना किया है।
1: निश्चित रूप से किसान भूमि पुत्र अन्नदाता, हमारी भूख को मिटाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है, खेतों में लगा रहता है, और हमारी कोशिश होती है कि उस किसान को हम वैज्ञानिक सोच से ओत प्रोत करते रहें। कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से जब हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम में भारत की मिट्टी की, तो भारत की मिट्टी की सौंधी सुगंध बसती है हमारे रोम रोम में। आइए एक देशभक्ति रागनी के माध्यम से हम भी नमन करते हैं। इस देश पर गर्व करने का ये क्षण हम नहीं छोड़ना चाहते, तो सुनते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्रेम से ओतप्रोत ये रागनी।
1: कलाकार थे ब्रह्मपाल नागर।
0: जब भी बात होती है देश की तो बात आती है भारत की विविधता की। जी हाँ, भारत बनता है संस्कृति से, संगीत से, कला से, विज्ञान से और कृषि से।
1: बिल्कुल नीरा, जब विज्ञान और कृषि एक साथ जुड़ते हैं तो उस अनूठे संगम का हम कहीं ना कहीं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आज देश की मिट्टी तक हमारे देश के वैज्ञानिक बेटों के अनुसंधान पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसान घर बैठे कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से, कृषि जगत के माध्यम से, कृषि संबंधी सलाह के माध्यम से खेती करे। ऐसी ही कुछ कृषि संबंधी सलाह हमारे पास है कि किसान इस वर्षाकालीन मौसम में प्याज की पौध की रोपाई कर सकता है। ध्यान रखें, जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। वहीं कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
0: बिल्कुल, वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए किया जा सके।
1: मित्रों, इस मौसम में यदि हम चारे की बात करें पशुओं के लिए, तो यह समय ज्वार की बुवाई के लिए उपयुक्त है। यह थी कृषि संबंधी सलाह।
0: अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ईमेल के जरिए बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@gmail.com।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे

0: फार्म हो या सिटी, सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:35 हुए हैं और अब सुनते हैं गजल। गजल में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गजल।

0: बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा, तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी। और राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुलेगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
5: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
3: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40

0: 30 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। श्री संधू ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा में देश का नेतृत्व करना है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत वीरों के अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लहराता तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी है।
3: लहराता हुआ तिरंगा केवल हमारे लिए गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की संकल्प भी है और हमें यह निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का सतत दायित्व भी है। यह तिरंगा हमेशा हमारे लिए गौरव है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ऐसी राजधानी का निर्माण करना है जो स्वच्छ, आधुनिक और आत्मनिर्भर हो, जहां नारी शक्ति सशक्त

0: हो, युवाओं के लिए नए अवसर हो, हर नागरिकता सुशासन का लाभ पहुंचे और संस्कृति विरासत विकास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अग्रणी भूमिका निभाएगी।
1: दिल्ली विकसित भारत की इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगी। दिल्ली भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ऊर्जा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्ली वासियों के विषय नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के कानूनी और न्यायिक संस्थानों ने भी देश के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है और परिपक्व हुए हैं। इन संस्थानों ने राष्ट्र की अंतर आत्मा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री जैन ने कहा कि यह दिन उन अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि सभी को एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।
2: आज के दिन हम उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं जिनके कारण हमें ये आजादी मिली है। बहुत श्रद्धा पूर्वक मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो उनके सपनों का भारत जो उन्होंने देखा हो, जो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत हो, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डुसू चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न छात्र संगठन और चुनाव मैदान में उतरने वाले छात्र नेता विद्यार्थियों के बीच सक्रिय रूप से संपर्क अभियान चला रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस के साथ साथ अलग अलग महाविद्यालयों और संकायों में उम्मीदवार छात्रों से संवाद कर अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं को उनके सामने रख रहे हैं। चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने अपनी रणनीति और प्रचार अभियान को भी गति दे दी है। उम्मीदवार छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए विद्यार्थियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। डूसू चुनाव के लिए मतदान अगले महीने 18 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। सकलायन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 446 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। अमृत उद्यान जनता के लिए कल से खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन संस्करण का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह उद्यान 15 सितंबर तक खुला रहेगा।
4: अमृत उद्यान के इस संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। देशज पुष्पों के संग्रह में बालसम, गुल मेहंदी, अपराजिता, बट्टम फूल, गोमफ्रेना, कुल्फा, रुक्मिणी, वर्षा फूल, मोरशिखा, दुपहरिया, लाल साग, कलिहारी और नागफना आदि शामिल है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
0: राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही, जिसके

0: कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। विभाग के अनुसार कल कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा, तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी। और राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। आप सबको जश्न आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद। सामईन, आज हम 80वां योम आज़ादी मना रहे हैं। ये दिन हम बरतानवी साम्राज्य से निजात की याद में 15 अगस्त को इंतहाई जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाते हैं। ये दिन हमें उन लाखों लोगों की लाजवाल कुर्बानियों और तवील जद्दोजहद की याद दिलाता है जिन्होंने एक आज़ाद फ़जा में सांस लेने और मुल्क की ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस दिन हमें खुशी मनाने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जिन ख्वाबों को मुजाहिदीन आज़ादी ने बुना था, हम उन पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं। इस दिन हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म करना चाहिए। यौम आज़ादी के मौके पर आइए सुनते हैं मुशायरा। निजामत कर रहे हैं जनाब नासिर अजीज।
2: आकाशवाणी के इस मुशायरे में यौम आज़ादी के जश्न के तौर पर हम आज उसका इनेकाद कर रहे हैं। मैं आप सब को न सिर्फ ये कि यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुशायरे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ यहाँ जनाब फारूक बख्शी साहब, जनाब अहमद महफूज साहब और जनाब प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, ये तीनों बहुत ही मारूफ व मकबूल शुअरा हैं, मौजूद हैं। मैं इन सब का इस्तकबाल करता हूँ। और क्योंकि हम ये जश्न आज़ादी के जश्न के तौर पे मना रहे हैं, ये मुशायरा उसी हवाले से मुनक़िद किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं जनाब फारूक बख्शी साहब, जो बहुत उमदा शायर हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले अपना कलाम पेश करने की ज़हमत फरमाएं। जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब,
3: बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। मैं जश्न आज़ादी के मौके पर एक गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें।
4: इरशाद फरमाइए।
3: वतन वतन

0: इलायचा करें बंद
1: जी आता
0: कुछ अलग अपनी मिट्टी की तासीर है कुछ अलग अपनी मिट्टी

0: कोई हम
1: डर
0: जाएंगे तेरी मिट्टी बनेगी हमारा कफन वतन वतन। गजल के चंद अशआर और मुलाहजा कर लीजिए। हवा चली तो कहीं खुशबुओं के बन जागे,
1: हवा चली तो कहीं खुशबुओं के बन जागे।
0: हवा

0: मगर उसका पैर
1: जागे वो सो रहा,
0: वो सो रहा। और ये आखिरी शेर मुलाहजा करना है
1: जी, शायद में

0: जलाओ के
1: जुम्मन
0: अंजुमन
1: जागे
0: जागे
1: चिराग दर्द जगाए, कुछ
0: चराग
1: वाह, बहुत उम्दा। जरा तभी जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब अपनी बहुत ही तहदार आवाज में एक मिल्ली तराना पेश किया और उसके बाद गजल के चंद अशार। अब इसके बाद इजाजत चाहता हूं कि मैं कुछ अपना कलाम पेश करूं, मतलब मुलाहिजा फरमाए। अर्ज़ियों किया है कि सुनाकर नज्म गजलें गीत हमने वो समा बांधा, सुनाकर नज्म गजलें गीत हमने वो समा बांधा, फसाहत का बलागत का मानी का जहां बांधा, और लिया था नाम दुनिया का निशाना बेवफा पर था, लिया था नाम दुनिया का निशाना बेवफा पर था, कहां की बात थी हमने मगर लाकर कहां बांधा, कहां की बात थी हमने मगर लाकर कहां बांधा। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि मेरे अशार की शोहरत जमी से आसमां तक है,
0: मेरे
1: अशार की शोहरत जमी से आसमां तक है, शजर बांधे हजर बांधे जमीन व आसमां बांधा, शजर बांधे हजर बांधे जमीन व आसमां बांधा। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ इस गजल का आखिरी शेर के, बहुत मुश्किल था सैले गम से यूं बचकर निकल जाना,
0: बहुत
1: मुश्किल था सैले गम से यूं बचकर निकल जाना, हिसारे शेर में लेकिन वो दर्दे बेकरां बांधा, इशारे शेर में लेकिन वो दर्दे बेकरां बांधा, और सुनाकर नज्म गजलें गीत हमने वो समा बांधा, फसाहत का बलागत का मानी का जहां बांधा। और कुछ अशार और एक गजल से पेश करता हूँ। अज्यूं किया है, मतलब मुलाहिजा फरमाए कि मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है,
0: मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है,
1: मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है कि मेरे दिल में कोई खुद शनास रहता है,
2: मेरे कोई खुद शनास,
1: मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है कि मेरे दिल में कोई खुद शनास रहता है, और जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है, जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है, वो शख्स जिसको जमाने का पास रहता है, वो शख्स जिसको जमाने का पास रहता है, और वो कह गया है तो वापस जरूर आएगा, वो कह गया है तो वापस जरूर आएगा, ये मेरा दिल तो अबस ही उदास रहता है, ये मेरा दिल तो अबस ही उदास रहता है। और ये शेर मैं बतौर खास आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूं कि मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर,
2: मुझे नहीं है सजा से,
1: मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर, अमीर शहर मेरे घर के पास रहता है। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर, अमीर शहर मेरे घर के पास रहता है, और झुके ये जब भी तेरे संगे आस्था पर झुके, झुके ये जब भी तेरे संगे आस्था पर झुके, मेरा जबी से यही इल्तिमास रहता है, मेरा जबी से यही इल्तिमास रहता है। और अजीज जिसकी वफा हमसे दूर दूर रही, अजीज जिसकी वफा हमसे दूर दूर रही, वो शख्स दिल के बहुत पास पास रहता है, अजीज जिसकी वफा हमसे दूर दूर रही, वो शख्स दिल के बहुत पास पास रहता है। और एक गजल के कुछ और शार पेश करने की इजाजत चाहता हूं। अर्ज़ियों किया है कि अजब सा हू का आलम अब हमारे दिल में रहता है,
2: अजब सा हू का आलम,
1: अजब सा हू का आलम अब हमारे दिल में रहता है, ये हाल उसका है जो हरदम भरी महफिल में रहता है, ये हाल उसका है जो हरदम भरी महफिल में रहता है। और यहां मैंने

0: करके लौटे।
1: पस्तो बुलंद सारा हमवार करके लौटे, इस बार हम उसे ही सरशार करके लौटे। और शेर मुलाजा करें कि अब मंजिले जुनू को सर करके देखना क्या,
2: अब
1: मंजिले जुनू को सर करके देखना क्या, निकले तो थे हजारों दो चार करके लौटे। अब मंजिले जुनू को सर करके देखना क्या, निकले तो थे हजारों दो चार करके लौटे। उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर,
2: उस अरसे हवा का अब तक
1: है बोझ दिल पर, अच्छा हुआ जो खुद को बेजार करके लौटे। उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर, उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर, अच्छा हुआ जो खुद को बेजार करके लौटे। और ये शेर खास तौर से मुलाहजा करें शबर साहब, देखिए कि कब तक न साफ करते उनसे हिसाब हिजरां, कब तक न साफ करते उनसे हिसाब हिजरां, उस बार था जो बाकी इस बार करके लौटे। कब तक न साफ करते उनसे हिसाब हिजरां, उस बार था जो बाकी इस बार करके लौटे। और शेर देखिए कि क्या मुफ्त है ये सौदा जो चाहे उस गली में,
2: क्या मुफ्त है ये सौदा जो चाहे उस गली में
1: जा नजर लेके जाए दीदार करके लौटे। क्या मुफ्त है ये सौदा जो चाहे उस गली में, जा नजर लेके जाए दीदार करके लौटे।
2: बहुत अच्छा।
1: और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि जाते हैं लोग ऐसे थक हार कर जहां से,
2: जाते हैं लोग ऐसे थक हार कर जहां से
1: घर अपने जैसे कोई बाजार करके लौटे। जाते हैं लोग ऐसे थक हार कर जहां से घर अपने जैसे कोई बाजार करके लौटे।
2: बहुत अच्छा। समीन, आप अभी महसूस हो रहे थे जनाब अहमद महफूज साहब के बहुत ही उम्दा मुरस्सा कलाम से। और अब अखीर में मैं जिन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने भी देखने की हद कर दी और वो भी तस्वीर से निकल आया। इस शेर के खालिक जनाब शेख रसूल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अपना कलाम।
3: शुक्रिया। मैं अवलन तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद शेर, एक मतला इस तरह है, मुलाहजा कीजिए कि शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं,
2: शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं,
3: शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं, हमें खबर है कि जिसके सबब लगे हुए हैं। शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं, हमें खबर है कि जिसके सबब लगे हुए हैं। मुलाहजा कीजिए कि तो यह है असल हरीफ, ऐसा तो गुमा भी न था, तो ये है असल हरीफ ऐसा तो गुमा भी न था, ये मेरे साथ जो नामो नसब लगे हुए हैं। तो ये है असल हरीफ ऐसा तो गुमा भी न था, ये मेरे साथ जो नामो नसब लगे हुए हैं। मुलाहजा कीजिए, है कोई गोशा दुनिया जो शर से खाली हो, है कोई गोशा दुनिया जो शर से खाली हो, अदब के पीछे भी कुछ बेअदब लगे हुए हैं। कोई गोशा दुनिया जो शर से खाली हो, अदब के पीछे भी कुछ बेअदब लगे हुए हैं। और मुलाहजा कीजिए कि उसे मिला है जो ऐसे, हमें वो कैसे मिले, उसे मिला है जो ऐसे, हमें वो कैसे मिले, उधेड़ बुन में इसी सब के सब लगे हुए हैं।
2: क्या
3: उधेड़ बुन में इसी
2: वाह वाह वाह
3: सब के सब लगे हुए हैं। और शेर मुलाहजा कीजिए कि ये फूल फल जो नजर आ रहे हैं शाखों पर,
2: ये फूल फल जो नजर आ रहे हैं शाखों पर
3: लहू बदन का निचोड़ा है तब लगे
2: हुए हैं। क्या बात है।
3: ये फूल फल जो नजर आ रहे हैं शाखों पर, लहू बदन का निचोड़ा है
2: लगे हुए हैं,
3: तब लगे हुए हैं। اور جناب یہ مقطع حاضر ہے کہ سبھی

0: को उसका सरापा लगा है सबसे जुदा,
1: सभी को उसका सरापा
0: लगा है सबसे जुदा, मगर वो नैन तो शह पर गजब लगे हुए हैं। सभी को उसका सरापा लगा है सबसे जुदा, मगर वो नैन तो शह पर गजब लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये दूसरी गजल के चंद अशआर मुलाहिज़ा कर लीजिए। मतला खास तौर पेश कर रहा हूँ कि ये फतह जहल मुसलसल भी एक कमाल तो है, ये फतह जहल मुसलसल भी एक कमाल तो है, जवाब हो न हो इसका ये एक सवाल तो है, ये फतह जहल मुसलसल भी एक कमाल तो है, जवाब हो न हो इसका ये एक सवाल तो है, हूँ मेरा जिक्र तो उठ जाते हैं वो महफिल से,
2: हो
0: मेरा जिक्र तो उठ जाते हैं वो महफिल से, मगर मैं खुश हूँ कि उनको मेरा ख्याल तो है, मगर मैं खुश हूँ कि उनको मेरा ख्याल तो है। और एक शेर ये मुलाहिज़ा कर लीजिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल है, गालिबन ये शेर मैंने और तो कहीं सुना नहीं, ये उस पर है, मुलाहिज़ा कीजिए कि मिले भी पर्दे बरकी पे उनसे बात भी की, मिले भी पर्दे बरकी पे उनसे बात भी की, बना में हिजर ये एक सूरत विसाल
2: तो है,
0: मिले भी पर्दे बरकी पे उनसे बना में हिजर ये एक सूरत विसाल तो है, इसका मकता हाजिर है कि बिछड़ गए हैं जो लम्हे बिछड़ने थे शह पर, बिछड़ गए हैं जो लम्हे बिछड़ने थे शह पर, भले ही गम न करें हम मगर मलाल तो है, मिले भी पर्दे बरकी पे उनसे बात भी की, बना में हिजर ये एक सूरत विसाल तो है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर में और पेश कर रहा हूँ, गालिब की जमीन में चंद शेर है, मतलब यह है कि मशरबे शेर के रिंदों का वो एक पीर भी था, मशरबे शेर के रिंदों का वो एक पीर भी था, सब पे गालिब था मगर मुतकिदे मीर भी था। मशरबे शेर के रिंदों का वो एक पीर भी था, सब पे गालिब था मगर मुतकिदे मीर भी था। और मुलाहिज़ा कीजिए कि हमने उस वक्त माफ़ी की रिवायत डाली, हमने उस वक्त माफ़ी की रिवायत डाली, गैर जब जेर भी था और तहे शमशीर भी था, हमने उस वक्त माफ़ी की रिवायत डाली, गैर जब जेर भी था और तहे शमशीर भी था। मुलाहिज़ा कीजिए कि फाशिए राज फरिश्तों के लिखे पर ही हुआ, देखिए मैंने इसको दूसरे पहलू से कहा, गालिब ने भी कहा है, मुलाहिज़ा कीजिए कि फाश ये राज फरिश्तों के लिखे पर ही हुआ, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर था, फाश ये राज फरिश्तों के लिखे पर ही हुआ, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। मुलाहिज़ा कीजिए कि शेर तो तुम भी नया कहते हो लेकिन शह पर, शेर तो तुम भी नया कहते हो लेकिन शह पर, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर था। बहुत शुक्रिया जनाब।
2: सामईन इकराम, अभी आपने इन मौजूद शुराए इकराम का इंतहाई मुरस्सा अब बहुत ही नादिर कलाम सुना। हमारे आज के आकाशवाणी के इस मुशायरे में जिन शुराए इकराम ने कलाम पढ़ा उनमें ये खाकसार नासिर अजीज़ ने अपना कलाम सुनाया, और इसके अलावा जिन शुरा ने कलाम पढ़ा उसमें जनाब फारूक बख्शी साहब, जनाब अहमद महफूज साहब और जनाब प्रोफेसर शहपर रसूल साहब ने अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश किया।
3: सामीन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब नासिर अजीज। और सामीन, एक बार फिर आप सबको जश्न आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद। और अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आपने मुशायरा सुना, और अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का, और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपका कैसा गुजरा और आकाशवाणी के साथ आपका दिन कैसा गुजरा, ये आप हमें जरूर बताइएगा।

नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है। रंग

गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये वो ऊर्जा होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में और आपके जीवन में भर जाती है। और वो जो जज्बा होता है वो सिर्फ गानों से नहीं होता, वो आपका सच्चे दिल का एक ख्याल होता है, एक जज्बा होता है, एक सोच होती है, और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश को दोबारा से जगाता है। इसलिए वक्त वक्त पर इस तरह के गीत ज़रूर सुनते रहने चाहिए जिसमें देशभक्ति की भावना ज़रूर हो।

और ऐसी ही बहुत सी ख्वाहिश होनी चाहिए हर एक भारतवासी के दिल में कि वो अपने देश के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए बहुत कुछ कर गुजरे। और अब ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज़। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33%

0: संसद विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्त धारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुखरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया।

0: विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapno, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne hamari soch ko vistar dete hain. Hamare sankalp dridh hone chahiye. Jab sankalp dridh hota hai to kathinaiyon se, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
2: हमने 99% को जो कभी no-go area हुआ करते थे, हमने उसको go-ahead area के रूप में खुला कर दिया। और अब हम समुद्र के भीतर भी exploration करने की और नए-नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया।
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for

0: खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौमे आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौमे आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौमे आज़ादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौमे आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुरबत से बाहर आ गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा निशाना तय किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमजोर मईशतों वाले मुल्कों में शामिल था, अब दुनिया में एक बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब वो खुद अपने ख्वाब और अज़्म की ताकत के साथ कदम बढ़ाता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि बड़े ख्वाबों और मजबूत अज़्म से मुल्क की कोशिशों की सलाहियत में इजाफा होता है।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा दौर की बड़ी जरूरियात में से एक है और सरकार ने इस सिलसिले में कई अहम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि एटमी तवानाई मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी का एक अहम वसीला है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने साहिल समंदर के 99% इलाके खोल दिए हैं और सरकार अब समंदर की गहराइयों में तलाश का काम सरगर्मी के साथ अंजाम दे रही है और नए जखायर दरियाफ्त करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
1: हमने 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया।
0: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर देते हुए जना मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके के कुनबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया। वजीर आजम ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI की हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। जना मोदी ने कहा कि इस तरह ये नौजवान आलमी सतह पर AI के शोबों में सरकर्दा रोल अदा कर सकेंगे।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो कुव्वत की 7 धाराओं सप्त धारा को बरूए कार लाएं। जना मोदी ने कहा कि अगले 5-7 साल में मुल्क वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो गुज़श्ता 5-7 दहाइयों में भी हासिल नहीं किया जा सका था।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: वजीर आजम ने कहा कि अगले 7-8 साल में मजीद 5 से लेकर 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। जना मोदी ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
2: आज यौम आजादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मरतबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आजादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की मिशनों ने भारत के 80वें यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरासत और इलाकाई नीज आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम कलीदी साझेदारी को उजागर किया, जबकि सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम ने हुनरमंदी के फरोग, डिजिटल शक्ल दिए जाने, पायदार निजाम और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत उजागर की। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने भी 80वें यौम आजादी पर भारत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल के सदर आइजक हर्ट्ज़ोग ने अपना पैगाम हिंदी में भी शेयर करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने भी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि लातविया की वजारत खारजा ने भारत के लगातार पेशरफ्त, इत्तेहाद और खुशहाली के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर इसराइल के सफीर, अर्जेंटीना के सफीर, श्रीलंका के हाई कमिश्नर, नीज नेपाल और फ्रांस के सिफारतखाने, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और कनाडा के हाई कमीशन की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए हैं। इनमें भारत के विरसे और गुनागुनियत, इकतसादी सलाहियत और फरोग पाते हुए बामी ताल्लुकात को उजागर किया गया। وزیر اعظم نریندر مودی نے ان عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی، ان میں فرانس کے صدر ایمانویل میخاں اور مالدیپ کے صدر محمد معزو شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ کی مبارکباد کے پیغام کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور باہمی خوشحالی کے لیے بھارت

नेपाल के दरमियान कसीर रुखी और सदियों पुराने तहजीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के खातिर मिलकर काम करने के पाबंद हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोगे के पैगाम के लिए उनके शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ खसूसी और पायदार साझेदारी को बहुत कद्र की निगाह से देखता है, जो लगातार मजबूत होती जा रही है। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी के पैगाम के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और स्लोवाकिया के दरमियान जामे साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और 2047 तक विकसित भारत की तामीर के अज़्म को उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मजमून में नायब सदर जमहूरिया के अंडमान और निकोबार जज़ायर के हालिया दौरे का तज़किरा किया गया है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हुआ जब भारत अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है और पूरे मुल्क में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली एक पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी पर 5,000 रुपये की नकद ग्रांट दे रहे हैं और इसके लिए लोगों के बैंक खाते की तफसीलात मांगी जा रही हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हकायक का पता लगाने वाली यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर इस तरह की किसी भी नकद ग्रांट की कोई तायद नहीं की है। उसने लोगों को खबरदार किया है कि इस तरह के पैगाम के जरिए अक्सर जाति या माली जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। पीआईबी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो चौकस रहें और इस तरह के पैगाम पर भरोसा करने या उन्हें दूसरों तक पहुंचाने से पहले सरकारी वसीलों से इस तरह के दावों की तस्दीक कर लें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस जजीरे के करीब आज 7.7 शिद्दत का जलजला आया है। इस वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। इस जबरदस्त जलजले के बाद कई झटके महसूस किए गए, जबकि राहत टीमों ने बुरी तरह मुतासर होने वाले इलाकों में पहुंचने की कोशिश जारी रखी। मुल्क के कई हिस्सों में कम से कम 1-1 मीटर सुनामी की लहरों की भी इत्तला है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्टेशन रोड पर वाक़ आज एक इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद कई लोगों का दम घुटने लगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासिर लोगों को एक अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने वाले महकमे ने आग पर काबू पा लिया है। ये वाकया बांद्रा के एम के चेंबूर इलाके में पेश आया। भारत ने नीदरलैंड्स के आम्स्टेलवेन में FIH हॉकी आलमी कप के ग्रुप डी के एक मैच में वेल्स को 1-3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की तरफ से सैम वेल्श ने वाहिद गोल किया। गाले में मेजबान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वे एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: اینجا و دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

अरे अरे सबको यू ना, अरे रुक रुक रुक, अरे सबको यू ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। विश्व नेताओं और

विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाक्के किसान के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का। जी हाँ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, वो गाने जो सुनकर आज भी हम एक ऐसा सुकून महसूस करते हैं जिसकी दीवानगी हर दिल पर देखी जाती है।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: फिर आप?
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सकी तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर?
0: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लूँ।
0: हाँ।
1: वो देखते हो? वो?
0: हाँ हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी?
1: हाँ, पकड़ लाओ।
0: मुर्गी?
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 88वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेज़न से आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा है। पत्र सूचना

कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाके केसांग के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक खास कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राजदूत अभय कुमार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण बलिदानों को याद किया और पिछले 8 दशकों में देश की शानदार यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे 1947 में भारी चुनौतियों का सामना करने वाले एक नए स्वतंत्र देश से भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रूपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से

बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों और परियोजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से सरकारी कार्यक्रमों और जनजातीय समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है। उन्होंने ये बात आईटीडीए और आईटीडीपी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा और आईटीडीए और आईटीडीपी को मजबूत करने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस नामक दो प्रकाशनों को जारी करते हुए कही। नीदरलैंड के एम्स्टेलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम। वोयलन पर संगत चंद्रशेखरन जी की है। राग शुभा पंतुवरली। घटम पर संगत की है सुकन्या राम गोपाल ने। तो आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और 24 सेकंड हुए हैं। इस

मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे दें। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे, 5:10 का समय आओ योग करें कार्यक्रम का है, जिसके अंतर्गत आज आप योग उष्ट्रांगासन और योग से संतुलित जीवन के बारे में जानेंगे। 5:20 का समय देशभक्ति गीत संगीत का है और प्रातः 5:30 पर आप सुनेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर रंजनी कार्यक्रम, जिसमें आज आप बिमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत राग भटियार सुनेंगे। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरोजनी नायडू के विचारों

0: चिंतन। इसके उपरांत 6:45 पर रामचरितमानस से भाग अयोध्या कांड भाग 19 आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का भी आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रूपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई एकेडमिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये सुविधा पहले कल खत्म होनी थी और आज से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होना था। अधिक महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने का मौका देने के लिए सरकार ने कागजी टिकट की अवधि बढ़ाई है। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डीकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। केएल राहुल 77 रन पर रिटायर हुए थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में

दो से तीन दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्ध ऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें। 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना,
1: जी
0: हमें
1: जी
0: आपे में जीवन जीना है।
1: जी
0: और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं
1: जी
0: होती है ना। तो
1: बिल्कुल
0: एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो
1: जी
0: बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचे।